91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं, इस वक्त वहाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओं ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा अगला गीत तो वहाँ सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने।

गुंजन धर्मशाला ते गणेश होता तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी थी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेईई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका, आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप के पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल रही है तुम। बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लो प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिया पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी थाली से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता के उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करें। अब चुपचाप खाना खा ले, मतलब 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
4: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
4: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे
4: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
4: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
5: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
4: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
7: हाय हाय, कितनी गंदी चाय बनाई है। काकू कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
8: ठीक तो है,
7: ठीक है ना, चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
8: क्या तो सही रही है निहारी का तो। मम्मी
7: क्या है?
8: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
7: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
8: छुड़वलती है,
7: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है, अच्छी तो बनी है। छुड़वलता है, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेईई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल दर्द सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक

0: अरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तुम। बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लो प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी थाली से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता के उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खा ले, मतलब 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
4: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे पैटर्न वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
4: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे
4: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
4: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
5: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
4: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
7: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई है। काकू कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
8: ठीक तो है।
7: का ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
8: क्या तो सही रही है निहारिका, तो मम्मी
7: क्या है?
8: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
7: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
8: झूठ बोलती है।
7: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है।
9: झूठ बोलता है, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी।
7: मजा आ गया। आहा

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी और

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: सर।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेईई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी,
2: जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप के पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू।
0: बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है उन्हें खाना नहीं दे। सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लो प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी थाली से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता के उसकी इस बात पे बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब जो क्या खाना खाने मतलब 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
7: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
7: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे,
7: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
7: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
5: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
7: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
8: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
9: ठीक तो है।
8: कहाँ ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
9: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
8: क्या है?
9: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
8: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
9: झूठ बोलती है,
8: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है, अच्छी तो बनी है। झूठ बोलते है, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा

ये सच है कि कारवां बनते भी हैं और बिखरते भी। कुछ चेहरे दुआ बनकर मिलते हैं तो कुछ सबक बनकर बिछड़ते भी हैं। हर मोड़ पर कुछ यादें सीने से लगानी पड़ती हैं और कुछ दर्द मुस्कुराकर मिटाने पड़ते हैं। जो साथ चलने का वादा करते हैं अक्सर वही खो जाते हैं, मगर सफर रुकता नहीं। कदम आंसुओं के साथ भी बढ़ जाते हैं, चलना ही जिंदगी है दोस्तों। टूटकर भी जो बढ़े वही असली हौसला कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, नए दिन के साथ। तो आप सभी की सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से हो चुकी है ये उम्मीद करती हूँ, और अपनी सेहत का भी ध्यान आप सभी बहुत अच्छे से रख रहे हैं, क्योंकि काम जो है वो जोर शोर से शुरू हो चुके हैं, खास करके हम धर्मशाला की बात करें जी। दोस्तों कुछ क्षेत्रों में तो लोग फ्री भी हो चुके हैं फसलों के काम से, लेकिन अभी धर्मशाला में जो है पूरे जोरों शोरों के साथ जो है लोगों में ये एनर्जी, ये उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मौसम ने भी अपना डर जो है वो बनाया हुआ है। तो किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है, हौसलों के साथ बढ़ा जाता है, टूटकर नहीं संभल कर आगे बढ़ा जाता है। सबक भी मिलते हैं और टूटते भी हैं, लेकिन हमें सबक लेकर जिंदगी को बनाना है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अब ये 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का सफ़र बहुत ही प्यारा सा रहने वाला है, क्योंकि ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारे प्यारे प्यारे से गीत और ढेर सारी बातें आप सभी के कानों तक पहुंचने वाली हैं, आप सभी के अपने रेडियो सेट के माध्यम से। तो आइए, बातों के साथ बहुत ही प्यारी सी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देर है तो एक प्यारे से मीठे से गीत की। तो आइए मनोरंजन की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

ऐसे गीत आप सभी तक पहुंच रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्यारे से सफर को बढ़ाते हैं आगे की और जानते हैं मौसम की अपडेट। तो दोस्तों, इस समय धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो लगभग 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस समय धर्मशाला का, और बहुत ही गर्मियों वाली धूप जो है वो खिली हुई है। सुबह लग रहा था बहुत ही घने घने से बादल जो थे वो छाए हुए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम क्लियर हो गया है। तो अभी जो काम, जिनको काम का जोर जो है वो एक तरह से लगा हुआ है, यानी कि काम की टेंशन लगी हुई है फसलों के काम की, तो उन्हें थोड़ी सी राहत मिली होगी कि नहीं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मौसम अब क्लियर हो गया है तो फटाफट से काट के बस कटवाने का काम करना है और फिर फ्री होके आराम से थोड़ी चैन की सांस लेनी है। तो ये मौसम तो परेशान करेगा ही, क्योंकि मौसम के साथ कोई भी लड़ झगड़ तो सकता नहीं है। तो फिलहाल आइए दोस्तों जानते हैं मौसम विभाग के अनुसार मौसम का क्या कहना है, हमें किस तरह से सतर्क रहना है, सावधान रहना है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के बीच मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। राज्य के कुछ एक क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में 3 और 4 मई को 5 जिलों में ओलावृष्टि व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और अंधर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो देख लीजिए दोस्तों, फिर से अलर्ट आ चुका है कल और परसों के लिए। तो देखते हैं मौसम आगे किस तरह से हमें किस अपने मिजाज के रंग दिखाता है। तो मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक ही जिला चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में 3 मई को व कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला में 4 मई को ओलावृष्टि के साथ तेज अंधर चलने का अलर्ट है। तो हमें काम भी करना है लेकिन पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि कई बार हम हड़बड़ी में जब ये फसलों का काम करते हैं, और गेहूं का काम होता ही एक्चुअली एक तरह से बहुत ही फास्ट फास्ट होता है, बस काटो और कटवाओ और इतना हम थक जाते हैं ना, क्योंकि वहीं हम धान की बात करें तो वो थोड़ा सा होता है कि टिक टिका के काम होता है, काट के सुखाना है उसे अच्छे से, फिर उसको मतलब वो बहुत टाइम लेते हैं। मज़ा भी आता है चावल खाने का, लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत होती है। और वहीं गेहूं की बात करें तो बस फटाफट से काटो कटाओ, बस जैसा भी है, बस काम से फ्री होना, क्योंकि मौसम ने अगर अपने तेवर दिखा दिए तो फिर काम जो है वो लंबे समय के लिए रुक जाता है और फिर परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ही है कुछ हम किसानों की ज़िंदगी, मेहनत भी करते हैं, निराश भी होते हैं, खुश भी होते हैं, तो ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, बस इसी तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो फिलहाल हमारा ये प्यारा सा कार्यक्रम बहुत ही प्यारे से सफ़र के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है, तो हम क्यों रुकें, हमें भी तो प्यारे से मनोरंजन की ओर चलना है। तो बिल्कुल दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो आप सभी इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: 9:20 हो चुके हैं और अब मनोरंजन को थोड़ा सा ब्रेक देने का समय है और समय है अपने आसपास की कुछ खास जानकारियां जानने का। तो आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी ढेर सारी बातों के साथ और साथ ही ढेर सारे मनोरंजन के साथ।
1: नियमों में अहम बदलाव करते हुए नागरिकता संशोधन नियम 2026 किए लागू और प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ। मौसम विभाग ने 3 व 4 मई को कुछ स्थानों में बारिश व ओलावृष्टि की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के 5वें सबसे बड़े निर्यातक के उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है बल्कि सफलतापूर्वक 60% LPG का उत्पादन भी देश के भीतर ही कर रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और माल ढुलाई लागत में वृद्धि के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा कीमतों को स्थिर बनाए रखा है, जो आम नागरिक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश में 17 मई को होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इससे पहले अब तक इस चुनाव के लिए कुल 690 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। 4 मई को इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 6 मई को इच्छुक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के चुनाव के लिए 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इनमें 4 नगर निगम सोलन, पालमपुर, मंडी, धर्मशाला और 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन निकायों में कुल 360,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 180,963 पुरुष और 179,882 महिला और 14 अन्य मतदाता हैं। चुनाव के लिए 589 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नगर परिषद और नगर पंचायतों के मतों की गणना मतदान वाले दिन यानी 17 मई को ही कर ली जाएगी, जबकि चारों नगर निगमों के मतों की गणना 31 मई को होगी। शहरी निकायों के चुनाव में 1,808 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय और पंचायत चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने कल 41 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इनमें IAS, IFS, HAS और HPFS अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रसायन मुक्त स्वदेशी गाय आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मिशन के माध्यम से 2 साल तक प्रति एकड़ 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। ऊना जिले में लगभग 15,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़कर गैर रासायनिक और कम लागत वाली खेती को अपना रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे किसान कम लागत में कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों रहित खेती कर रहे हैं। इससे लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद मिल रहे हैं और पर्यावरण को और दूषित होने से भी बचाया जा रहा है। जिले के 14,240 किसानों का प्राकृतिक खेती से जुड़ाव हो चुका है, जिन्हें समय समय पर तकनीकी जानकारी के साथ साथ जैविक उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्राकृतिक उत्पादों से किसानों को अधिक दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। इन किसानों का कहना है कि प्राकृतिक खेती अपनाकर वे लोगों को जानलेवा बीमारियों से दूर रखने के अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर पा रहे हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: मंडी जिला की 577 ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों के चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि मतदान 26, 28 और 30 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। नामांकन प्रक्रिया 7, 8 और 11 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूरी कर ली जाएगी। चुनाव 3 चरणों में जिले के विभिन्न विकास खंडों की पंचायतों में कराए जाएंगे। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है और शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए कल नागरिकता संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के इस फैसले से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI आवेदन प्रक्रिया से लेकर पासपोर्ट नियमों तक कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत अब OCI कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदकों को अब फिजिकल OCI कार्ड के साथ साथ OCI ई का भी विकल्प मिलेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। इन नए नियमों के लागू होने से प्रवासी भारतीयों और OCI कार्ड धारकों के लिए प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि नाबालिगों के पासपोर्ट संबंधी सख्ती से नागरिकता से जुड़े विवादों और दुरुपयोग की संभावनाएं कम होंगी। ये बदलाव भारत की नागरिकता प्रणाली को आधुनिक, सुरक्षित और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव 2026 के लिए मतदान कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त किरण भड़ाना द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विकासखंड लाहौल में मतदान 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
4: पहले चरण में 26 मई को तिंदी, तिंगरट, त्रिलोकनाथ, मोरिंग, नालडा, घोरमा, रानिका, करदंग, मूलिंग, दारचा, कोकसर और केलांग पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 28 मई को सलग्राम, चिमरट, उदयपुर, थिरोट, चूंडा, जोबरंग, बारपा, गोशाल, कोंदला, कोलोंग, सिसु और यूरनाथ पंचायतों में मतदान होगा। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 30 मई को मडग्राम, शकोली, किशोरी, जहालमा, शांशा, मालंग, तांदी, खंगसर, बरबुक और शोरिंग पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग दें और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: आज प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 3 और 4 मई को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं व ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने किन्नौर व लाहौल स्पीति सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों में तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना व्यक्त की है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हवाले से सुर्खी दी है, भविष्य की चुनौतियों को देख सैन्य तैयारी करे आरट्रैक। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल की वादियों की कायल हुई राष्ट्रपति, कहा जमीन लेकर यहां बसने का करता है मन। दैनिक जागरण लिखता है, चिट्टा तस्करी के लिए नाबालिग बनाए जा रहे कुरियर बॉय। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, बनोई में 13 साल के बच्चे से 1030 ग्राम चिट्टा बरामद। दैनिक जागरण की एक अन्य सुर्खी है, वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा की कीमतें रखी स्थिर। प्रदेश में 17 मई को होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत ऊना जिले में प्राकृतिक खेती को मिल रहा बढ़ावा, करीब 14,000 से ज्यादा किसान योजना से जुड़े। केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए नागरिकता संशोधन नियम 2026 किए लागू। और प्रदेश में मौसम आमतौर पर साफ, मौसम विभाग ने 3 व 4 मई को कुछ स्थानों में बारिश व ओलावृष्टि की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली

बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, और इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। और कार्यक्रम में रुख जो है वो थोड़ा सा बदलते हैं अपनी बातचीत से जानकारियों की ओर। दोस्तों, जानकारियाँ हमारे लिए जो है बेहद खास और बहुत ही ज़रूरी होती हैं जो हम तक पहुँचती हैं। तो आइए जानते हैं एक बहुत ही खास जानकारी।

हिमाचल प्रदेश में 156 CBSE से संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर विभिन्न विषयों के लिए आयोजित किए गए स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम जारी हो गया है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार 24 जनवरी 2026 से शुरू हुई चयन प्रक्रिया के तहत 22 मार्च को लिए गए इस स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल 9,821 शिक्षकों ने भाग लिया था। अब इन स्कूलों में तैनाती मेरिट और काउंसलिंग के दौरान दी गई वरीयताओं के आधार पर होगी, यानी मेरिट से ही स्कूल की प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि JVT और CNV शिक्षक जिला कैडर से संबंधित है, लेकिन चयनित शिक्षकों को राज्य के किसी भी CBSE संबद्ध स्कूल में तैनात किया जा सकेगा, यानी जिला कैडर की नियुक्ति स्टेट कैडर के आधार पर होगी। इससे उनकी वरिष्ठता और पदोन्नति पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काउंसलिंग शेड्यूल भी जल्द ही निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। प्रिंसिपल पद के लिए 5 मई से काउंसलिंग

की शुरुआत हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी शिक्षकों पर भी वर्तमान सेवा शर्तें ही तैनाती के बाद भी लागू रहेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर रिजल्ट शुक्रवार को डाल दिया गया है। जी दोस्तों, सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें, क्योंकि आगे की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे काउंसलिंग शेड्यूल वहीं प्रकाशित की जाएंगी। तो ये बहुत ही खास जानकारी अब सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से एक प्यारा सा गीत आप सभी तक पहुंचाते हैं। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। और आज 2 मई 2026 का दिन, देखिए दोस्तों समय कब कहां से कहां पहुंच जा रहा है। अप्रैल मंथ कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, तो ये 5वां महीना चल पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि साल की अभी तो हमने शुरुआत की थी और अभी ही बस एक मंथ के बाद जो है हाफ ईयर जो है होने वाला है, यानी कि 6 मंथ के बाद जो है हाफ ईयर होता है, लेकिन आज 6 मंथ चल पड़ा, यानी कि हाफ ईयर चला गया हमारे हाथों से। तो क्या पाया, क्या खोया, क्या पाना है, बस इसी में हम उस समय को गंवाते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के दिन की हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन की अपनी एक खासियत है, अपनी एक अहमियत है, तो आज के दिन क्या खास बात है दोस्तों। आज के दिन यानी कि 2 मई को हैरी पॉटर दिवस दुनिया भर के पॉटर प्रेमियों के लिए खुशी का दिन लेकर आता है। तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जेके राउलिंग की साहित्यिक कृति को सम्मान देने के लिए इस दिन को आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। अब श्रृंखला की आखिरी किताब के प्रकाशन के 1 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी पात्रों और उनके जीवन की घटनाओं के प्रति लोगों का जुनून कम नहीं हुआ है। अपनी जादुई छड़ी उठाइए और दोस्तों हैरी पॉटर दिवस की इतिहास में खो जाइए। जरूर बात करेंगे दोस्तों इस दिन की खासियत के बारे में और इतिहास के बारे में कि आखिर क्यों मनाया जाता है, क्या रीजंस हैं, तो जरूर। लेकिन उससे पहले हम फिर से एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

तो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया और इस समय कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं एक और जानकारी। जी दोस्तों, 10वीं का रिजल्ट जो है वो तो पहले ही आ गया है और बच्चों को राहत भी मिल चुकी है, लेकिन बात करें माफ़ करना दोस्तों, जो 12वीं का रिजल्ट है वो इसी हफ्ते जो है वो आने वाला है। प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा के अनुसार शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का परिणाम अगले 2 से 3 दिन में जारी करने वाले हैं और इसके कुछ ही दिन के बाद बोर्ड द्वारा 10वीं के परिणाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हुए 1 माह हो चुका है और अब 10वीं व 12वीं के करीब 1.84 लाख परीक्षार्थियों को अपने परिणाम को लेकर उत्सुकता है। अब 12वीं का परिणाम आगामी सोमवार या मंगलवार को घोषित किए जाने की पूरी संभावना है तथा 10 मई से पहले 10वीं का परिणाम भी बोर्ड द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। जी दोस्तों, जब भी ये हम एग्जाम्स देते हैं फिर उसके बाद ना ये उत्सुकता रहती है कि कब रिजल्ट आएगा और कब हम देख पाएंगे कि हमारी मेहनत कितनी रंग लाई है। डर भी होता है लेकिन एक उत्सुकता भी होती है कि हमने कितनी मेहनत की है और वो मेहनत का आखिरी परिणाम किस तरह से रहने वाला है। तो बच्चों के लिए एक ही एडवाइस जो है वो ज़रूर मैं देना चाहूँगी। वैसे तो बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत मजबूत हैं खुद को संभालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स का एक होता है ना कि प्रेशर होता है, और वैसे भी 12वीं का रिज़ल्ट है तो इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स का ज़्यादा होता है कि उसके बाद कॉलेज में एडमिशन या किसी कोर्स में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए उनकी परसेंटेज जो है वो हाई होनी चाहिए। या तो कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि पेरेंट्स की ही चॉइस के अकॉर्डिंग उन्होंने स्ट्रीम जो है वो चूज़ की होती है और वो कई बार उसमें बेस्ट दे नहीं पाते, कोशिश करते हैं लेकिन उतनी इंटरेस्ट के साथ वो उस फील्ड में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि कमी रह ही जाती है। जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसके लिए हम दिल जान से मेहनत करते हैं, उसके लिए भी करते हैं, लेकिन हाँ फिर भी निराशा जो है वो रह जाती है। तो ऐसे में पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को वो डराएं ना, उस तरह का माहौल क्रिएट ना करें कि बच्चे घर पे रिजल्ट बताने से डरें। भले ही परसेंटेज कम हो, मार्क्स कम हो, किसी भी तरह से वो जो है उनका रिजल्ट रहे, तो बच्चों को उस तरह का डर ना बनाएं, क्योंकि कई बार बच्चे उस डर की वजह से गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को उनका सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है, उनको सहारा देने की ज़रूरत होती है। डांटने, एकदम से जब हम डांट देते हैं बच्चों को तो वो फिर जो है ना वो डर जो है उनके मन में हमेशा के लिए बैठ जाता है। डर ज़रूरी है लेकिन डर के भी एक अलग अलग से पहलू है ना दोस्तों, तरीका है बच्चों को समझाने का। अगर आप सही तरीके से उन्हें समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। फ़िलहाल इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और इसी गीत के साथ कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल दर्द सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, इस बहुत ही प्यारे से सफर को आप सभी अपने काम के साथ एंजॉय कर रहे हैं बिना समय को बर्बाद किए। तो बिल्कुल, बातचीत इसी तरह से जारी रहेगी, इसी तरह से ये सफर आप सभी एंजॉय करेंगे। लेकिन से पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, क्योंकि मनोरंजन के बिना हमारी बातचीत भी अधूरी सी है। तो आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

तो से इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ इस प्यारे से कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए दोस्तों अपनी बातचीत का रुख जो है फिर से बातचीत की ओर ही लेकर चलते हैं। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब माने तो सब है और ना माने तो कुछ भी नहीं। तो हिमाचल प्रदेश की हम बात करें दोस्तों तो क्या ही कहना, वो तो हर किसी की जुबान पर एक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जो है उसके नज़ारों के अकॉर्डिंग हर किसी की जुबान पर जो है ना ये बहुत ही प्यार से शब्द आ जाते हैं जी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में देव समाज का सर्वोच्च महत्व रहा है। यहाँ हर आयोजन का शुभ आरंभ देव समाज के आशीर्वाद से ही होता है। कुछ लोगों को ये चीजें मजाक लगती होंगी, कुछ लोग जो है विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ जो लोग इनकी अहमियत जानते हैं, जो सच जानते हैं, इतिहास जानते हैं, उनके लिए ये मजाक नहीं, उनकी विरासत है, उनकी अहमियत है। दोस्तों इसी परंपरा के अंतर्गत अब हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA बारिश के देवता इंद्रुनाग के दरबार में नतमस्तक हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मई महीने में 3 IPL मैच होने हैं और इसके साथ ही जून में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का भी आयोजन होगा। इन मैचों का सफलतापूर्वक आयोजन करवाने के लिए HPCA इंद्रुनाग देवता के दरबार पहुंची। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ हवन और पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें HPCA सदस्यों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में जब भी कोई बड़ा आयोजन होना होता है तो परंपरा अनुसार HPCA भगवान इंद्रुनाग मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा करते हैं ताकि आयोजन बिना किसी अड़चन से सफल रहे। साल 2003 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मैचों का आयोजन हो रहा है जी। दोस्तों 2005 में स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम और बोर्ड एकादश के बीच टेस्ट मैच खेला गया। उस समय काफी ज्यादा बारिश हुई थी, इससे मैच में खलल पड़ा था। इंद्रुनाग देवता को यहाँ बारिश का देवता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए HPCA भी हर मैच से पहले इंद्रुनाग देवता की पूजा अर्चना करती है ताकि मैच का सफलतापूर्वक आयोजन हो सके और बारिश से कोई बाधा ना हो। भगवान इंद्रुनाग का मंदिर धर्मशाला से 10 किलोमीटर दूर खनियारा गांव की सुंदर पहाड़ी पर स्थित है। स्थानीय मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो धर्मशाला क्षेत्र में भगवान इंद्रुनाग को बारिश का देवता माना जाता है और ऐसे में बड़े बड़े आयोजनों से पहले भगवान इंद्रुनाग का आशीर्वाद लिया जाता है। ये परंपरा सालों से ऐसे ही चली आ रही है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि भगवान इंद्रुनाग की कृपा से मौसम अनुकूल बना रहता है और आयोजन बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। इसी आस्था के चलते HPCA हर बड़े मैच से पहले भगवान इंद्रुनाग के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। वहीं स्थानीय लोगों का भी भगवान इंद्रुनाग में गहरा विश्वास है। बारिश ना होने पर भी लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। नई फसल सबसे पहले देवता के चरणों में अर्पित करने की परंपरा आज भी यहाँ कायम है। तो है ना कितनी सुंदर बात और कितनी प्यारी सी बात जी। दोस्तों जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो भगवान ही सब कुछ होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि भगवान जी खुद आकर आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे और आप गलत पे गलत करते जाएं, ऐसा नहीं होता है। आप बस सही कर्म सही राह पे चलते रहिए, आपको राह दिखाएंगे, सही काम के प्रति प्रेरित करेंगे। और इंद्रुनाग देवता जी की बात करें तो सचमुच ये एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी, बहुत ही रहस्यमयी, हमारे लिए एक गर्व की बात है ना। जब
गर्म जब हमें बारिश की ज़रूरत होती है और बारिश नहीं हो रही होती है तब भी हम इनके चरणों में जाते हैं, और जब बारिश नहीं चाहिए होती है तब भी सबसे पहले हम इंद्रुनाग देवता जी के चरणों में जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, और वो साथ भी देते हैं, तो ऐसे में विश्वास तो अपने आप बन जाता है ना। तो आइए दोस्तों, इसी खास बात के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

तो इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का, तो आइए मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, हरमशाला गूंज अपने पन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी से जुड़ी बातें अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें तो बचपन की हम बात करें, शुरुआत बचपन से होती है। बिना चिंता की खुशी, कोई चिंता नहीं होती, बस अपनी जिंदगी को बिना परेशानियों के एंजॉय करते हैं। उसके बाद पढ़ाई, अच्छा भविष्य, उसके सपने, नौकरी लग जाए तो तब जिएंगे, शादी के बाद या फिर शादी हो जाए तब आनंद लेंगे, बच्चे बड़े हो जाएं, शादी कर दूं, फिर चैन से घूमूं, रिटायरमेंट के बाद अब जिंदगी जीऊंगा, पर वक्त कभी रुकता ही नहीं। दोस्तों, ये जिंदगी का सर्कल है। हमारी जो ये ख्वाहिशें रहती हैं, हमारे जो ये सपने रहते हैं, वो इस तरह से चलते हैं कि हर समय कोई ना कोई परेशानी हमें साथ लेकर चलती है। इंसान पूरी जिंदगी जीने की तैयारी करता है, लेकिन सच ये है कि वो वक्त कभी आता ही नहीं। हर पड़ाव के बाद एक नई जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है और इंसान फिर उसी कल के इंतजार में लग जाता है। इस भाग दौड़ में वो भूल जाता है कि जिंदगी तो अभी है, इसी पल में है। कल की चिंता में वो अपना आज खो देता है और जब तक समझ आता है तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। सच तो ये है, कल कभी आता नहीं और आज हर दिन हाथ से निकल जाता है। इसलिए इंतजार छोड़िए, छोटी छोटी खुशियों को आज ही महसूस कीजिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो पल अभी है वही सबसे सच्चा है, वही सबसे अपना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आज में जी लीजिए, क्योंकि यही पल है और यही जीवन है। तो ये जीवन की सच्चाई है। तो आज ही अपनी जिंदगी की चिंताओं को छोड़कर अपनी जिंदगी के हर एक पल को दिल से एंजॉय कीजिए। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया है अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो जब हम प्रकृति से बातें अगर करना चाहें ना दोस्तों, तो सचमुच वो हमसे बात करते हैं। फूल हो, कलियां हो या फिर पेड़ पौधे हो, जब हम दिल से किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं, अपनापन जहाँ झलकता है, तो वो सचमुच इशारों में ही सही लेकिन वो बातें ज़रूर करते हैं। बस महसूस करने वाले होने चाहिए, समझने वाले होने चाहिए। वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बातों को हम समझ ही नहीं पाते। उनके पास तो बताने के लिए या सुनाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन ये जो प्रकृति का नज़ारा है ना दोस्तों, ये बहुत कुछ बिना कहे भी हमें सुकून दे जाता है, बहुत कुछ कह जाता है। एक बार बस इसमें खोकर तो देखिए, फिर आपको ज़िंदगी में उससे बढ़कर और कुछ नहीं लगेगा। क्यों हम प्रकृति को इतना परेशान कर रहे हैं, क्यों उसकी अहमियत को हम समझ नहीं रहे? वो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है, वो हमारी

इस जिंदगी को एक खुशमय तरीके से संवारती है, लेकिन फिर भी हम स्वार्थी बन जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो इतना स्वार्थ अच्छा नहीं होता। तो फिलहाल दोस्तों, ये तो ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, लेकिन देश दुनिया से जुड़ी भी कुछ खास बातें जान लेते हैं। आइए जानते हैं एक बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, भारत ने मॉडर्न हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है। इसकी जानकारी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने लिखा कि देश के लिए ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम गुजरात में HH 48 के सूरत से भरूच सेक्शन पर स्थित 84 टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये एडवांस सिस्टम वाहनों को बिना रुके टोल भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फास्टैग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही खास जानकारी ये आप सभी तक पहुंचाई गई है। और इस ये जो है काम किस तरह से करेगा पूरा सिस्टम, 84 टोल प्लाजा पर शुरू हुआ ये MLFF सिस्टम ऑटोमेटिक काम करेगा। ये सिस्टम वाहनों को पहचानने और उनका टोल चार्ज वसूलने का काम रियल टाइम में करेगा। यहाँ पारंपरिक टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है और टोल जो है वो धीरे धीरे कटता है। वहीं मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम एडवांस सेंसर और कैमरा की मदद से प्रक्रिया को पूरा करता है। ये स्ट्रक्चर वाहनों को स्कैन करके उनके टोल की वसूली करता है और इस सिस्टम में लगे सेंसर गुजरने वाली गाड़ियों के फास्टैग स्टिकर को स्कैन करते हैं और उस फास्टैग से लिंक्ड अकाउंट से टोल का राशि जो है वो काट ली जाएगी। तो ये जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका ने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और फिर से एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत आप सभी के साथ 91.2 MHz से।

तो सो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से, और इस समय कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो दोस्तों एक इसी के साथ आप सभी को एक और बहुत ही खास जानकारी, एक तरह से यूं ही कह सकते हैं कि आपकी हेल्प जो है हमारे लिए और लोगों के लिए, मैं आपसे इसकी अपील जो है वो करना चाहूंगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव का समय आ रहा है, वोटिंग का समय आ रहा है, बहुत ही नज़दीक आ चुका है, आ नहीं रहा है, बहुत नज़दीक आ चुका है, और हर तरफ जो है इसी बात का शोर, गुपचुप वाला शोर, ज़्यादा नहीं मतलब कि सभी की जुबान पर वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ गुपचुप हर कहीं ये चहल पहल जो है वो चल रही है। तो इसमें इसी से जुड़ी एक बात आप सभी से कहना चाहूँगी, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि ये जो रेडियो गुंजन धर्मशाला है ये आप सभी का अपना रेडियो है और इसमें आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो है आसपास के जो भी उम्मीदवार हैं, खास करके प्रधान या उप प्रधान के लिए जो इस समय इस बार जो है वो खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि उनसे आपके कुछ सवाल हैं और उनकी बात को, उनकी आवाज़ को, उन सवालों को रेडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा सा अवसर है दोस्तों कि आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं जी। तो दोस्तों आप सभी को मैं हमारा जो स्टूडियो का नंबर है वो आप सभी को बता देती हूँ, वैसे तो आप जानते ही हैं लेकिन फिर से बता देती हूँ, 7018117091 इंग्लिश में भी बताऊंगी दोस्तों, लेकिन फिलहाल ये हिंदी में आप सभी तक पहुंचाया गया है तो आप सभी आइडिया लगा ही लेंगे, क्योंकि आप सभी जुड़ते हैं हमारे इस नंबर से, हमारे प्यारे प्यारे से कार्यक्रमों में, अपने फरमाइशी कार्यक्रमों में। तो इस नंबर पे, इस पे आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि आपके कोई आसपास के जो उम्मीदवार हैं जो कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका आप हमें जो है कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं और उनसे फिर हम स्टूडियो में बुला के जो है उनसे बातचीत, आपके सवालों के जवाब जो है उनसे आप तक पहुंचाए जाएं रेडियो के माध्यम से। तो ज़रूर आप हम तक उनकी डिटेल पहुंचाइए और अपना नाम भी बताइए और अपने सवालों को भी हम तक पहुंचाइए कि कौन कौन से सवाल जो हैं उनसे होने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग सी पहल होती है, एक जज्बा, एक जुनून होता है लोगों में, तो उस जुनून के साथ कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से वो अपने काम कर रहे हैं। तो ज़रूर दोस्तों आपके सहयोग की ज़रूरत है और आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़रूर जुड़िए हमारे इस नंबर पे, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या टेक्स्ट मैसेज कीजिए, हम ज़रूर आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और आप उनकी जो उम्मीदवार आप चाहते हैं कि हमारे स्टूडियो में आके आपके सवालों के जवाब जो हैं बातचीत के माध्यम से दें, उनकी डिटेल भी आप हम तक पहुंचाइए। तो ये बहुत ही खास जानकारी है आप सभी के लिए और बहुत ही खास अवसर है, तो ज़रूर दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाइए और हमारे साथ जुड़िए। तो आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत आप सभी के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों इसी गीत के साथ अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। समय का पता ही नहीं चलता दोस्तों, ऐसा लगता है कि अभी तो 9 बजे थे और अभी 11 बज गए। ये सफर कब कहां से कहां ले आता है ना, बस ऐसे ही बस हम गुम होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसी तरह से गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का सफर भी अब अलविदा लेने के मुकाम पर पहुंच चुका है। तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका, आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू।
0: बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे। सुनाई दे रहा है कुछ?
2: प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
0: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी दाढ़ी से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता गई। उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं है। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब जब क्या खाना खाने में 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार,
5: मैं संजय वाघमारे।
4: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
4: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
4: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
5: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
4: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
4: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
5: तो लगा लो ताला,
4: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
4: और अगर कोई OTP मांगे,
5: बरोबर
4: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
5: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
4: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
5: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
7: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
8: ठीक तो है।
7: कहाँ ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
8: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
7: क्या है?
8: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
7: आहा, बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा,
8: झूठ बोलती है।
7: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है, अच्छी तो बनी है, झूठ बोलता है। आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। गीत सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

0: अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: Let me hear you shout!

गीत सुहाने नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आता है, रिश्तों पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि फिर इंसान ना चिड़चिड़ा हो
1: जाता है,
0: मूड इम्पैक्ट होता है. सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद वन अनदर कि स्लीप का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है,
1: जो कि आज के समय में बहुत ही कम है. चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चों में तो खास करके ही बहुत ही कमी देखने को मिल रही है कि वो अक्सर अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं. तो मैम, बच्चों को हम क्या रीजंस दे सकते हैं, मतलब बच्चों को जो नींद पूरी नहीं हो पाती है?
0: देखिए, बच्चों के लिए तो आज के समय पे सबसे बड़ा कारण है उनका फोन और उनके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल. जैसे जैसे एक पेरेंट अपने छोटे बच्चे को रूटीन में डालेंगे ना, वैसे वैसे बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि एवरी बिहेवियर इज अ लर्न्ड बिहेवियर. आप बच्चे को सिखा सकते हो, और बच्चा, क्योंकि बच्चा इज लाइक अ मोल्ड, आप उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, यू नो, वो एक सॉइल की तरह होता है, वो एक मिट्टी की तरह है. आपके ऊपर है ये कि आप उसको कैसे, किस तरह का एनवायरनमेंट और किस तरह का लाइफस्टाइल में उसको ढालना चाहते हो.
1: जी, और मैम एक बात मैं यहाँ पे ये भी बताना, मतलब कि जानना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों के, अगर अभी हमने फोन की बात की है, तो वो तो हमें पता है कि एक फोन की एडिक्शन बच्चों के लिए बहुत ही गलत है. जो फोन वो रात भर यूज कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वो पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पढ़ाई का नाम दे रहे हैं तो कई बार बच्चे लैपटॉप जो है काफी लेट नाइट तक यूज करते हैं, फोन भी यूज करते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए भी यूज करते हैं, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पे? क्या उससे भी स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है कहीं ना कहीं हमें फेस करना पड़ता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली. देखिए, हर चीज हमारे न्यूरो, लाइक न्यूरोकेमिस्ट्री से कनेक्टेड है. अगर हम गलत टाइम पर सही चीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो जाएगा.
1: सही हो सकती है, बिल्कुल. मैं यही आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि पेरेंट्स का ये मानना होता है कि अगर वो फोन पे गेम्स खेल रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि गलत है. लेकिन अगर वो उसी समय जो है लेट नाइट तक, चाहे वो 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब भी, 2-2 बजे, कुछ कुछ बच्चे तो ऐसा होता है कि 2-2 बजे तक सोते नहीं है, वो 2 बजे सोना है उन्होंने, तो वो लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं या फोन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, ये पढ़ाई कर रहे हैं.
0: देखिए, पेरेंट्स में ना एक बहुत स्ट्रांग सोच ये रहती है कि अगर रात को बच्चा पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहा है, हम उसको मेहनत से नहीं रोकेंगे, क्योंकि शायद उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा. लेकिन अगर आप इस आज के टाइम के दौर पे अगर मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के साथ चीजों को देखें और समझें, तो आप ये समझिए कि व्हाट आर यू पुटिंग एट कॉस्ट, यानी कि आप बच्चे की नींद पूरी नहीं होने दे रहे, जबकि नींद के दौरान हर व्यक्ति में उनकी ब्रेन सेल्स रिज्यूविनेट होती हैं. हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं वो रीडेवलप होती हैं, मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, तभी बच्चे को चीजें याद भी रहेंगी. तो जो बच्चा पढ़ रहा है पर सो नहीं रहा है, नींद नहीं पूरी कर रहा है, उसको चीजें याद भी नहीं रहने वाली हैं. और फिर उस चीज को याद रखने के लिए लोग सब्सटेंस में चले जाते हैं, रुचिका.
1: बिल्कुल.
0: और फिर पेरेंट्स के लिए वो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. तो एज पेरेंट्स, आप ये मत सोचिए कि बच्चा रात को पढ़ रहा है तो अच्छी बात है. आप ये सोचिए कि बच्चे की नींद पूरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि जो काम बच्चे के लिए उसकी बॉडी, उसका ब्रेन और जो नेचुरल चीजें हैं वो कर सकती हैं, वो कोई और नहीं कर सकता. अब इसमें क्या ही फायदा है कि बच्चे ने 2 साल या 3 साल 4 साल मेहनत करी, फिर वो कॉलेज में पहुंचा, और कॉलेज में जाने के बाद अब जब उसको नींद नहीं आती है तो वो रात में फोन चलाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके हैं, और फिर वो सब्सटेंस लेकर अपनी नींद पूरी करता है, या सुबह उठकर कॉलेज नहीं जा पाता, या फिर अपने यूथ में ही वो इतना फटीक फील करने लगता है कि उसको हर चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता, वो किसी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं आता. तो इससे एज पेरेंट्स आपने क्या ही अचीव कर लिया. पर आप सोचिए, अगर आपका बच्चा 5-10% कम नंबर ले भी आए यदि, बट उसका जो एक रूटीन है या उसकी जो एक गुड हेल्थ है वो सस्टेन कर पाएगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो बुरी आदतों से भी दूर रहेगा. सो व्हाट वुड यू प्रिफर? तो हम तो यही बोलेंगे एज पेरेंट्स को कि आप ये मत सोचिए कि एकदम से बच्चा एकेडमिकली पीक ले ले और उसकी मेंटल हेल्थ से अगर प्राइस पे करना पड़ रहा है बच्चे को तो वो करे, क्योंकि उसके बाद मेंटल हेल्थ खराब होने के बाद वो उसके रिलेशंस में भी इम्पैक्ट आएगा, विच ऑल्सो इंक्लूड चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशन.
1: जी,
0: सो यू हैव टू थिंक कि बच्चे का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी.
1: बिल्कुल. तो दोस्तों, यही मैं कहना चाह रही थी और आप सभी तक ये बात पहुंचाना चाह रही थी कि अक्सर हम बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं कि बच्चे लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को वहां पर कोई

0: ऑब्जेक्शन नहीं होता है, खैर अच्छी बात है, लेकिन हाँ हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, दो दिन लगाकर हमने पढ़ाई कर ली और एक मंथ लगाकर हमने बिस्तर पकड़ लिया, तो Definitely. उसका फिर क्या ही फायदा रहेगा।
1: या
0: तो,
1: फिर पढ़ लिया इतना और एग्जाम टाइम पे जाके ब्लैकआउट हो गया, अब याद ही नहीं है।
0: बिल्कुल
1: ऐसा भी होता है बच्चों के साथ बहुत।
0: जी जी, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हर चीज का एक लिमिट होनी चाहिए और एक रूटीन के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में अपने शेड्यूल के साथ आगे बढ़ना है और एक समय है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। तो मिलते हैं आप सभी के साथ इस छोटे से गीत के बाद।

0: तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारी इस बहुत ही गंभीर सी और खास बातचीत के साथ। तो हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी भी इस बातचीत को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और जानते हैं मैम से और बहुत सारी जानकारियां स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। मैम अभी आपने बात की स्लीपिंग पैरालिसिस की, तो वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमारे दोस्तों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कई बार कि हम नींद में, जब गहरी नींद में होते हैं या जैसे भी है हम कहीं खो जाते हैं नींद में, तो हम कई बार ना रोने लग जाते हैं, तो उसे हम कैसे रिलेट करेंगे इस मतलब कि डिसऑर्डर के साथ या स्लीपिंग के साथ? किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या ये क्यों होता है हमारे साथ?
1: देखिए, आप जिस एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, इसमें अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि वो कोई सपना देख रहे होते हैं और उनको वो इतना रियल लगता है कि फिर वो अचानक से जब उठते हैं तो उनको वो एंग्शियसनेस रहती है, उनको वो घबराहट, वो डर रहता है जो भी उन्होंने सपने में दिखा होता है, और फिर उनको अचानक से रोना आ जाता है। तो बेसिकली, और ऐसा भी होता है कि असली में, मतलब सपने में भी रोए और असली में भी रोने लगते हैं और फिर आंख खुलती है और इंसान जो है वो बहुत घबराया हुआ होता है, दिल की धड़कनें तेज हुई होती हैं। तो ये जो होता है ये थोड़ा स्लीप पैरालिसिस से थोड़ा हटके होता है, इसको हम बोलते हैं नाइटमेयर। तो ये नाइटमेयर डिसऑर्डर है। नाइटमेयर्स में बेसिकली जो हमारे सपने होते हैं वो इतने खौफनाक और दर्दनाक होते हैं कि वो हमारा जो कोई भी पास्ट में वूंड रहा है या पास्ट का कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है वो हमें बार बार आता है। ये काफी ज्यादा लिंक्ड है विद PTSD, पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ। जो लोग अपने पास्ट में एक बहुत स्पेसिफिक ट्रॉमा से गुजरते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद उनको उसी ट्रॉमा से रिलेटेड, उसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ, लाइक नाइटमेयर थोड़ा अलग है देन स्लीप पैरालिसिस, बट यस, दोनों में ही हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है।
0: जी बिल्कुल, तो ये भी हमारी स्लीपिंग का पार्ट है। तो अक्सर जब हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो धीरे धीरे ये सारे सिम्टम्स हम में आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी नींद का, हमें वही फॉलो करना चाहिए, जो क्योंकि एक बार हमने अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ चलती रहती है। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि चाहे आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आप मेहनत करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन नींद को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, क्योंकि नींद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर वे में लेना, जो साइकिल है स्लीप वेक साइकिल है, उसे पूरा होने के लिए समय लगता है और उसे हमें जरूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, तो उसी तरह से नींद भी उतनी ही जरूरी है। फिर हमें डार्क सर्कल आ जाते हैं तो फिर हम सोचते क्या लगाएं, क्योंकि हमारे फेस का थोड़ा सा वो फिर अच्छे नहीं लग रहे हैं हम देखने में, तो हम बहुत सारे प्रोसीजर फिर अपनाने शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उस स्टेज तक जाएं ही ना,
1: बिल्कुल
0: ना, आप पहले ही सतर्क हो जाए।
1: Exactly, आप प्रॉब्लम को रूट लेवल से सॉल्व करें, उसकी गहराई को समझे, और जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था, नींद एक लग्जरी बनते जा रहा है, तो लग्जरी नहीं, वो नेसेसिटी है, इस बात को समझें और अपने जीवन में अच्छे से नींद को प्रायोरिटी दें।
0: जी बिल्कुल, पर दोस्तों एक बात और आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये स्लीपिंग, नींद कितना छोटा सा शब्द है ना, लेकिन जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा सा शब्द है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, जो कि हम आपको इतनी जल्दी जल्दी में तो बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम आपको पूरी डिटेल में ये जानकारी देना चाहते हैं। तो अगले एपिसोड में इसका अगला पार्ट जो है हम जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, है ना? तो बिल्कुल दोस्तों, लेकिन आज की इस हमारी खास बातचीत से जुड़ा अगर कोई भी आपका सवाल है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है और अगर आप इस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, तो आप हमारे सेंटर, हमारे मनोवैज्ञानिक मैम हैं, तो आप इनके साथ जो है जुड़ सकते हैं, और अगर जरूरत है आपको सेशन लेने की, काउंसलिंग सेशन की, तो जरूर दोस्तों बिना हिचकिचाहट जो है अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग सेशन लेने चाहिए। उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसमें पूरी प्राइवेसी रखी जाती है, आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है किसी तक नहीं पहुंचाई जाती, तो पूरा आपका ध्यान रखा जाता है। लेकिन हाँ, पहल आपको करनी होगी, अगर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तो ये स्टेप आपको लेना होगा। तो हमारे सेंटर का पता रहेगा,
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला, धर्मशाला, और फोन नंबर है 9354134057। ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी तक नंबर भी पहुंच चुका है और सेंटर का पता भी पहुंच चुका है, तो देर किस बात की है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कोई भी कमी आपको फेस करनी पड़ रही है, तो फटाफट से फोन उठाइए, डायल कीजिए और बात कीजिए, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सभी तक पहुंच जाएगा। और अगर सवाल है जो हमें बात करनी चाहिए आप सभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप सभी तक या और लोगों तक आप चाहते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारी जो है इस पे यूट्यूब पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें किस तरह से एडिशन करनी चाहिए या किस तरह से हमें बातचीत और इसमें एड ऑन करनी चाहिए। तो फिलहाल समय हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की ये खास बातचीत आप सभी ने एंजॉय की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो अब दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। आप सभी के साथ फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत के साथ, इसी स्लीपिंग डिसऑर्डर की नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: जॉय माल्या बातचीत की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगण कर्मियों का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले दो घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Malgo.

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, खुल गया है बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका अरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
2: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल रही है तू। बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
3: प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए।
4: ले बेटा अपनी थाली से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता गई उसकी, इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
5: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
6: मैं प्रकाश तांडेल।
7: मैं प्रज्ञा देसाई।
6: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
7: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
6: मकान पर, दुकान पर,
7: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
8: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
6: फोन पे बटन वाला,
7: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
6: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
8: तो लगा लो ताला,
6: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
7: तब,
6: और अगर कोई OTP मांगे
8: बरोबर
6: लगाइए
7: मुंह पे ताला।
8: याद रखिए,
7: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
6: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
8: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
7: तो लगाओ मुंह पे ताला।
9: आय हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
10: ठीक तो है।
9: का ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
10: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
9: क्या है?
10: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
9: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
10: झूठ बोलती है,
9: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है, अच्छी तो बनी है। झूठ बोलता है, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा

2.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनदे ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू, बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लो प्लेट दे उसको, खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी दाढ़ी से मत खिलाओ, उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता गई, उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं है। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
7: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
7: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे
7: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
7: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
5: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
7: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
8: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
9: ठीक तो है।
8: कहाँ ठीक है, न चीनी है न दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
9: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
8: क्या है?
9: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
8: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
9: झूठ बोलती है,
8: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है, अच्छी तो बनी है। झूठ बोलता है, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा।

0: नमस्ते नमस्कार 91.2 MHz पर ए तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में जशी तो हाँ तक कार्यक्रम ले करी प्रस्तुत जड़े से हुई हुए कने तो हाँ सारे भी अपने अपने रेडियो सेट करने जरूर जुड़ चुके होने न जुड़ना तो बनता है ना, क्योंकि अगर काम करा दे होंगे ता तो हाँ अपना जेड़ा रेडियो सेट है से ओ नहीं कित्या होना है। कने अगर थोड़ा दिया बिजी है ता जल्दी जल्दी समय दी और अपनी जेड़ा नज़र है से जरूर लगाई लिया, क्योंकि समय जेड़ा है से होई है 2:02 ता शो तो 2:02 कार्यक्रम च होई है न। कने तो हाँ सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा सफ़र है से तुहां तक रहता है 2 से 3 बजे तक। तो इस सफ़र करना है तुहां हम सफ़र बनना है 2 से 3 बजे तक। कने कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है, तुहां सारे भी इस कार्यक्रम च अपनी जेड़ा फरमाइशां से सुनी सकते। तो पहले जेड़ा श्रोता न पहले कर दें तिना करने गल बात। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तो हमारा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां मैडम जी, तो हां
0: जी हां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हां कुथु ते बोला दे कने तो हमारा ना क्या है जी?
1: विजय कुमार मेरा नाम
0: जी। विजय जी क्या काम कार तो हां लगाया?
1: मैडम बस रोटी खादी है ना और बरखा लगने तैयार है
0: जी। धर्मशाला जिड़े से बरखा लगने तैयार है कि लगी पी हो?
1: ना ना नहीं लगी, नहीं लगने तैयार ही है
0: जी। ता बरखा जिड़े से कुथी ना कुथी किसाना दे चेहरे पर जिड़ा स्माइल थी से फिटी फिकी पे ये ही है ना जी।
1: हां जी हां जी, ड्राई है ना
0: जी जी, क्योंकि किसान भी अपने अपने कम्मा पर लगे हो ना, तो सह सोचा दे कि यहां दी कणक जिड़े से कटुईया तो ठीक है ना जी। मौसम दी और थोड़ा दिया नजर रखना भी यहाँ वास्ते जरूरी है ना जी। जी जी, ता विजय जी आज तू हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके? जी गड्डी चली चंबा ते चवाड़ी ना जी। जी ये गीत तू हाँ तक पहुँचा दे जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तू हाँ दा। जी दशोता हूँ मौसम दी और अगर अहाँ अपनी जेड़ा नज़र है से दौड़ान देना तो तापमान दी अहाँ गल करना, तो अधिकतम तापमान जेड़ा

0: अपना दसा दस है, दसा दस 17 डिग्री कने जेड़ा न्यूनतम है से वे 11 डिग्री सेल्सियस रहने दा जेड़ा अनुमान है से लगाया वे। कने आसमान च जेड़ा ज़्यादातर बादल छाए रहने न, कने बादल दी यहाँ गल कीती तां बरखा दियां जेड़ा बुछारे न सभी जरूर गिरी हैं। कने जेड़ा अहां दे किसान हैं तिना दे चेहरे पर जेड़ा स्माइल थी से थोड़ी देर फीकी पई हो, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि अहां मेहनत कर देन तो मेहनत ने हर काम अहां करी पाते न, पर मौसम दे अगे अहां कुछ भी जेड़ा है से नहीं करी सकते। तो मौसम अपना जेड़ा बदलाव है से जरूर लैदा है, तो मौसम के अनुसार ही यहाँ वास्ते चलना भी जरूरी है। कने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो नमस्ते जी, जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी
0: जी, तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहंदा
1: नाम? मैं प्रीतम बोल रहा हूँ सिद्धवाड़ी से।
0: जी प्रीतम जी, क्या हाल चाल हैं सिद्धवाड़ी वाले दे?
1: हाँ ठीक है जी, मैं ये बीमार।
0: जी क्या हुई है जी तुहां जो?
1: हाँ शुगर है मेरी जिंदगी।
0: जी शुगर दी बीमारी बड़ी ज्यादा चली हो ना जी?
1: हाँ जी
0: जी, अपना ख्याल रखना है, समय के अनुसार दवाई खानी है, क्योंकि अहां कई बार होता है ना कि काम दे चक्कर च अपनी सेहत का ख्याल जेड़ा से रखना भूली आंदे ना जी।
1: दवाई दुई लगी है खा दे।
0: जी जी, समय अनुसार अपना जेड़ा ध्यान है से रखना है। वैसे भी शुगर दे जेड़ा पेशेंट हैं तिना वास्ते तो चौल जेड़ा ना से अगर पतील विच बनान तो सबसे बेस्ट होंदा ना जी। हर चीज जरूरी होंगी ना जी। आजकल तो हर कोई हर काम अहां चाहंदे कि 5 मिंट च होइया, चाहे 10 मिंट वाला काम है से 5 मिंट च करना हां आजकल पसंद करदे ना जी।
1: हां जी हां जी,
0: पर ए नहीं सोचदे कि ए 5 मिंट वाला काम अहां दी सेहत जो कुथी ना कुथी नुकसान जेड़ा से देख रही जांदा है ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी, अहां कमा दे यही सोची करी कमा दे कि अहां दा जेड़ा पेट है दो टाइम दी अहां रोटी खान अपने बच्चे न दिना जो मतलब फैमिली वास्ते ना जी। जी जी, तो प्रीतम जी आज तुहां कुंडिया गीत सुनना पसंद करिए।
1: गाना वहां रोज ही सुन जाइए, अपना ब्याह लगे बड़े वाजे ब्याह दा को गीत सुनना, कोई तेले दा सुनाई दे कि बूटने दा सुनाई दा।
0: जी अच्छा, ब्याह दा गीत सुनना है तुहां?
1: हां
0: जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। धन्यवाद अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो कर दिन अपने कार्यक्रम का आगाज इस प्यारे दे गीत करने।

0: तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दया गीत प्यारी दे शुरुआत शुरुआत ते फिर ते हाँ वापिस जड़न से अपनी गलबात ले करी तो हाँ तक पूछी न कने तो हाँ भी अपने रेडियो सेट दे आस पास होने न कने अपने जेड़ा कम कारण से करा दे होने न। वैसे तो रेडियो का एक तो फायदा है ना कि यहाँ रेडियो सेट ऑन करा कने अपने जेड़ा काम मन सभी करी लिया काशो तो काम भी करा कने अपना जेड़ा माटी दी मेह कार्यक्रम में सभी सुना ता आज यहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करनी है गल बात करना भी जरूरी है पर बार बार यहाँ मौसम दी ओर जेड़े से अपनी नज़र लगाते हैं कि मौसम जेड़े से किस प्रकार है ता मौसम दी ओर भी नज़र लगाना जरूरी है कने जानकारी जेड़े से तुहां तक पहुँचाना भी जरूरी है कशो तो जेड़ा बारिश दा अलर्ट है से जरूर दस्या तो तुहां समय दे अनुसार जेड़ा है कणक बड़ी होए तिहा जो कटाई लिया कने जेड़ा खड़ी है तिहा जो रहना दिया क्योंकि जेड़ा अहाँ कटी थी हो या बड़ी रखी हो तिहा दा तो ज़्यादा नुकसान जेड़े से अहाँ जो दिखने जो मिलता है कने मौसम तुहां जो बार बार जेड़े से जरूर डरा दे तो मौसम के अनुसार चलना जरूरी है कने तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहा करने जुड़ी सकते कने हाँ करने गल बात जेड़े से जरूर करी सकते तशो तो गल बात करने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है पहले तो नंबर जेड़े से तुहां लिखी लिया क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते नंबर है 7018117091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा तो शो तो मौसम के अनुसार अहां जो चलना जरूरी है कने अहां दे जेड़ा अगले श्रोता न पहले कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते शशि जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तो हंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला चे ठीक ठाक है ना।
1: ठीक ठाक बढ़िया जी तुसा सुना।
0: जी हाँ ठीक ठाक है जी तो हम अपने रेडियो सेट दी आवाज कम करी लें जी।
1: हाँ जी हाँ जी कर ली।
0: जी करी ली तो हाँ आवाज कम।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: जी तो हाँ अपना ना दसा कने कुछ जगह दे रहने आले ना।
1: जी मेरा ना ये बोल रीना बोला जी कने आ रही थी।
0: जी रीना जी क्या हाल चाल है कने आ रहे आले दे मौसम क्या बोला था उस साइड।
1: सची जी हाल चाल बड़े बढ़िया मौसम ने तो सारे काम खराब करी था।
0: जी
1: इतना जो इतना बड़े बड़े स्नाक ओले था कि वे जड़ा निकले थे बूटे पिंडी फ्रासमीन कीड़े निकले थे नहीं यार सब तबाह करी था।
0: सब कुछ तबाह हुई।
1: हाँ जी सब कुछ तबाह करी था मैं जो बड़ा और बोला एडी चार पिंडी निकली थी फ्रासमीन निकली थी ये साग प्रेस लाई थी प्रेस एडी चार निकली थी।
0: जी
1: कुछ नहीं छा
0: जी ता इतने ज्यादा ओले पे अपनी साइड
1: बड़े भारी ओले पे की बेसाते एड्डा बड़ा ओला कने।
0: जी उस साइड तो वैसे भी ज्यादा झुकिया था सीध बाड़ी था तो
1: बीन बाण सारा धनिया दुनिया तो सारा ये लम्मा पे जो रिया ही कुछ उठा नहीं पत्ते पत्ते हो जाने सारे बिखरी है ना।
0: जी तब मेहनत पर पानी फ्री है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी तो चलो तो हाँ तो कणक वगैरह तो नहीं लगाई हो ना जी।
1: नहीं लगाई है कणक नहीं तो नहीं लगाई है चार यार भी पाजे जरा ये लगाई कितने ना कणक लगाई हो जरा ना बुरा हाल होना।
0: जी बड़ा ही ज्यादा जिस हिसाब ने मौसम बढ़िया उस हिसाब ने तो थोड़ा दिया चेहरे दी स्माइल ऐसे थोड़ी देर किसाना दी फीकी हुई है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत कर दे यहाँ फिर मेहनत का फल अगर अच्छा ना मिले तो जी जी मौसम वैसे भी जेड़ा मैं कल भी दस्या था तुहे कि अलर्ट जेड़े से दस्या ना जी।
1: हां जी हां जी
0: बारिश दा तां ता क्या कर सकते मौसम ने तो हाँ वैसे भी नहीं लड़ी सकते ना जी। जी मौसम के अनुसार
1: खराब हुई
0: जी,
1: मन खराब हुई
0: मन खराब हुई ना जी। आहा, कोई भी मेहनत कर दे ना तो थोड़ा दिया बुरा ता लगता है
1: दुख
0: ता
1: लगता है जी। और
0: जी चलो तो हम ताली जेड़ा तो हाँ लगाए है पौधे से खराब होए न, पर जेड़ा किसान जी अगर एक बारी से जेड़ा तीना बड़ी होंगी कणक है सी जी तो फिर थोड़ा दिया मुश्किल हो जाता ना जी।
1: मैंने
0: जेड़ा खड़ूती हो कणक तिहा वास्ते तो ठीक है, किसती है तो कुछ भी नहीं होना, पर जेड़ा बड़ी थी तिहा वास्ते
1: खराब हो जाना
0: जी, खराब हो जाना ना जी। फिर एकदम ही है काली हो जाती ना कणक, फिर थोड़ा दिया जी जी जी जी जी रीना जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद
1: करके रौनका लगाइया पौना हारिया
0: जी। अच्छा चंडिया ने रौनका लगाइया पौना हारिया
1: पौना
0: जी। ताई भजन मुझे लगा था कि शायद पंजाबी है ना जी। पहाड़ी भजन ही तो हाँ, पहाड़ी गीत ही इस कार्यक्रम च सुनी सकते ना जी तो हाँ। जी जी तरीना जी कोई और फरमाइश दसी दिया, क्योंकि पंजाबी गाना तो हाँ तक कहाँ नहीं पहुँचाई पाना है ना जी।
1: अच्छा ये पंजाबी है
0: जी जी
1: इंडिया ने लोगों को लगाई है पौना रहे
0: जी जी
1: अच्छा तो फिर कोई मेरी फरमाइश काल नहीं हुई थी पूरी सारी सुनाई नहीं थी आज ये छलिया दे बूटे पानी देना राजा जी।
0: जी जी जरूर सही
1: जरानिया जरानिया दो यो पानी चलिए
0: जी जी सही फरमाइश तो हम तक पहुंचा दी जी जुड़ने वास्ते
1: धन्यवाद जी। कल टाइम हो गया था ना मेरे ख्याल
0: जी जी तो अगले जेड़ा श्रोता ने तिना करने भी कर देन गल बात तिना दे क्या विचार हैं। हेलो क्योंकि गीत संगीत जालू आहंदी गल बात करने जुड़ी आंदा है तो ये सफर और भी प्यारा लगता है, पर आहंदे जेड़ा श्रोता न से अहां जो कॉल पर कॉल करा देन ता पहले तिहा कॉल जो अटेंड कर देना। हेलो
2: हेलो नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
2: हां जी ठीक ठाक है। तुम बोला
0: जी? हां भी ठीक ठाक है जी। तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहांदा ना के जी?
2: मैं तंगलोटिया ते बोला रखना रमेश मेरा नाम है
0: जी। तो क्या हाल चाल है तंगलोटिया वाले दे? चर्चा चली थी कि जेड़ा किसान तुहंदी जुबानी यहां सुनी लिया कि जेड़ा कणका दे हाल अन से बुरे ना जी।
2: मेरे हजार बार जे कुछ ही बार जब खरी कई कहा दिंदा नहीं तबरे कर दम आ रही
0: जी जी। तो इस बार ये भी थोड़ा दिया जी। तो कितनी है की पटियां तो हम बड़ी थी यहीं
2: अली को 12 की पटियां बढ़िया
0: जी अली। बाकी जेड़ा ऐसे खड़ूती हुई है ना जी?
2: बाकी खड़ूती है ना 30-35 पटियां ने सब बाकी खड़ूती गया
0: जी जी। तो अली तक मौसम खराब ही है तो तिहा जो खड़ूती है रहना दिया ना जी। ज्यादा अगर हाँ काली कर दे ना तो फिर उल्टा हाँ जो नुकसान ही दिखने जो मिलता है ना जी।
2: हाँ बिल्कुल सही गल है। बदली बदली करी टिक जाती कम सारी
0: जी जी। क्योंकि अगर हाँ एक बारी इकट्ठा करी दे ना जी तो से कणक फिर खराब भी हो जाती ना जी।
2: ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
0: ਜੀ ਜੀ। ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਤੀ ਹੁੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੀਰੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਆਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ
2: ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਜਾਕਰ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਖਲਾਰਾ
0: ਜੀ। ਫਿਰ ਖੋਲੀ ਖੋਲੀ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਖੋਲਣਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਕਾਉਣਾ ਪਾਉਣੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪਾਉਣਾ ਡਬਲ
2: ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ
0: ਜੀ ਜੀ
2: ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ
0: ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈਏ
2: कौन सा नंबर कट लिया था
0: जी जी यहाँ भी थोड़ा दिया पीछे दिया मौसम खराब होया था ता थोड़ी दी यहाँ जो भी परेशानी आई थी ना जी।
2: अच्छा अच्छा चलो ता नंबर का ले लिया ना। हां जी चल बुरी आज
0: जी चलो टेंशन नहीं लानी ठीक हो जाना ना जी। मौसम ने वैसे भी यहाँ लड़ी नहीं सकते ना जी।
2: टेंशन नहीं लानी कल हर साल यही तो सब करेगा
0: जी जी जी। रमेश जी आज तो हम कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
2: गाना सुना जो दो गुजरिया दूध बेचने आईया
0: जी। दो गुजरिया दूध बेचने आईया
2: जी।
0: ये गीत तो तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा जी। तो श्रोताओ चल दे ना हाँ फरमाइश दी और तुह तक पहुँचा देनी सब प्यारिया दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

प्रीतम जी की फरमाइश हाँ तिना तक पहुँचाई कने से रहने वाले ने सिद्धपाड़ी ते कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने ते सफर जो थोड़ा दिया आगे बढ़ाने देना कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम च हाँ कने जुड़ी सकते कने हाँ कने गल बात जेड़े से जरूर करी सकते अपने जेड़ा विचार हैं से जरूर हाँ कने साझा करी सकते क्योंकि वैसे भी खेतीबाड़ी दे काम पियो तो थोड़े दे मन हल्का करने वास्ते अहाँ हमेशा यही चाहते कि अहाँ अपने जेड़ा विचार हैं से जरूर साझा करन तो मौसम कुथी ना कुथी जेड़ा अपना बदलाव जेड़ा से जरूर बदला दे तो मौसम दे अनुसार चलना भी जरूरी है। कई बार होंगे ना कि अहाँ मौसम दी और अपनी जेड़ा ध्यान है से नहीं लगाते न कने अपना ही जेड़ा दिखते न तो अपना नहीं दिखने मौसम दे अनुसार भी चलना हाँ वास्ते सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम दे और अगर अहाँ दिखते न ताई अहाँ चाहे से खेती बाड़ी का काम है चाहे से कोई भी काम है ता ही चल दे तो अशो तो फिर यहाँ थोड़ा दे आगे बढ़ते न क्योंकि अपनी गलबात करने अहाँ जेड़ा फरमाइश है न सभी तुह तक पहुँचानी है न कने फरमाइश अहाँ जो आई हुए धर्मशाला ते कने तिना दा ना वे विजय जी तिना तक पहुंचा देने इस प्यारे दे गीत जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे सुनिया ये गीत, गड्डी चली चंबा ते चवाड़ी, चलो वो गड्डी है। दर्शकों गड्डी चलती है ताई ता हाँ जिड़े से कुथी भी घूमी सकते न, पर कुथी ना कुथी ये हर सुविधा जिड़े से यहाँ जो थोड़ा देर चलने पर मजबूर बिल्कुल नहीं करती है। यहाँ थोड़ा देर भी चलना चल देना तहाँ हमेशा ये सोच देना कि कहीं नहीं यहाँ अपना जिड़ा भी कल है या अपना बस जिड़े तीस जहाँ ट्रेवल जिड़े से ज़रूर करना। पर तुम्हारा सारे जो ही पता है कि इसमें अनुसार हर चीज़ ज़रूरी है, ज़रूरत के अनुसार अहाँ नहीं बोल दे कि तुम्हारा ज़रूरत के अनुसार जिड़ा अपने भी कल अन सहाँ दे काम ऑन दे। पर पैदल चलना अहाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है सभी तुम्हारा सारे जो ही पता है। हर कोई यही जानता है कि यहाँ दी जिड़ा सेहत है से हमेशा फिट रहे। फिट रहने वास्ते थोड़ा देर पैदल चल देना, थोड़ा देर अपनी सेहत का ख्याल रख देना, थोड़ा देर काम कर देना, तहां दी जिड़ा सेहत है से जरूर ठीक रहती है। ता सेहत ऊपर भी जिड़ा ध्यान है से देने दी गल है, कने अहां दा जिड़ा ध्यान है से बार बार तुहंदी जिड़ा प्यारियां प्यारियां फरमाइशां न तिना ऊपर जाता है कि फरमाइशां भी पूरियां करनी है ना, क्योंकि समय जिड़ा से अपना रफ्तार लेकर जरूर चले तो समय के अनुसार अहाँ फ्री ते थोड़ा दे आगे बढ़ देना, कने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने तो हाँ सारे ही सुनिया ही प्यारा देया गीत प्यारी दे फरमाइश। इस गीत दी फरमाइश हाँ जो आई हुए रीना जी दी कने से रहने वाले न खने आ रहा थे तिना तक कहाँ एक गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया। तो मौसम दी अहाँ जेड़ा गल बात करा देन तो मौसम दे अनुसार चलना भी अहाँ वास्ते जरूरी है। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है चाहे बरसात है मौसम दे अनुसार अगर अहाँ चल देन तो हर काम अहाँ दा चल दे। पर मौसम इस टाइम जेड़ा से ज़्यादा ध्यान देने दी जरूरत है। वैसे भी अहाँ जो खेतीबाड़ी दे जेड़ा काम मन से पे हो न खेतीबाड़ी दा काम अगर अहाँ सफलतापूर्वक करी पाते न तो अहाँ दे जेड़ा चेहरे न तिना पर स्माइल जेड़ा से जरूर आई आती है। पर इस टाइम दी अहाँ गल करिए कई जेड़ा किसान हैं तिना ज़्यादातर अपना जेड़ा कणक है से बड़ी त्यो कने जेड़ा कणक दी जेड़ा कटाई है से कई

हाँ बोला दीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दीन आपने रेडियो तो शशि कने कार्यक्रम दा नाम है माटी दी।

0: महक ततो सारी भी माटी दी महर कार्यक्रम दे सफर शाह कने जुड़ी सकते कने सफर जो और भी सुहाना जड़े से बनाई सकते तो सुहाना किन्ना बनाई सकते क्योंकि अहां दे जड़ा श्रोता ने से इस कार्यक्रम च जुड़ते न अपने जड़ा विचार हैं से जरूर अहां कने साझा करते न कने मौसम दी भी अपने अपने क्षेत्र दी जड़ा जानकारी है से जरूर अहां तक पहुँचाते न क्योंकि मौसम दी जानकारी यहाँ तक पहुँचना भी जरूरी है यहाँ भी तो तक मौसम दी जड़ा जानकारी है से पहुँचा देन तो मौसम अपना जड़ा बदलाव है से जरूर लै दे कने तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते कने यहाँ करने गलबात जड़े से जरूर करी सकते गलबात करने वास्ते जड़ा अहाँ का नंबर है से फिर से तो तक पहुँचा देन नंबर तो सारे ही एक बारी फिर ते नोट करा नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा कने अहां दे जेड़ा अगली श्रोता अहां कने जुड़ चुके ना कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी जी तो अपने रेडियो सेट की आवाज़ कम करी लें जी।
1: हेलो ठीक ठाक
0: जी। हाँ जी ठीक ठाक हैं जी। तो हाँ कुछ ते बोला थे कने तो हम दा ना
1: किया जी। मैंने पुराने पुराने शोता तो आड़े नरवाने के
0: जी क्या हाल चाल है नरवाने आले अंदे
1: बात मैडम जी कण का सेड़ी थी सारियां
0: जी
1: बढ़िया जेड़ियां
0: जी ता बरखा लगी उस साइड भी
1: हां बरखा लगी मैडम जी जी हुण दी सोचो मगे बड़ी लगी पर
0: बड़ी ज्यादा लगी हो।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी
0: जी
1: तो ना मैडम ठीक ठाक है ना।
0: हाँ जी यहाँ ठीक ठाक है जी कणका।
1: अच्छा मैडम जी टॉपिक लिया तो हाँ
0: जी जी
1: आज तो मैं सोना लेट है ना जरा के पुगा पाऊ के थोड़े तो होना ना कना लेट सुने ना
0: जी जी। अच्छा
1: क्या तो हाँ
0: कटाई ली है तो हाँ
1: हाँ थोड़ दे मैडम जी
0: जी जी ता हाँ इदे ऊपर ही गल करा दे मौसम दे ऊपर ही कि मौसम दे अनुसार चलना जरूरी है क्योंकि खेतीबाड़ी दे काम मानना जी अगर हाँ जल्दबाजी
1: बड़ी सी जी मैडम जी लोकां कण के बड़ी थी ना लोकां बड़ी सी जी
0: जी जी ता विज्ञान दे अनुसार जेड़ा मौसम है यहाँ जो समय समय पर जानकारी दिंदा रहंदा है ना जी।
1: हाँ जी मैडम जी
0: आजकल ता हर सुख सुविधा हाँ लेना जी ता थोड़ा दे आती दा फायदा भी लेना चाहिदा ना जी।
1: बिल्कुल ठीक मैडम जी ठीक बोल
0: क्योंकि वेदर अहां जो हमेशा जेड़ा मौसम है तीदी जानकारी अहां जो मिलदी रहंदी ता
1: बिल्कुल मैडम जी आजकल बच्चे दे ते शार्प माइंड है ना
0: जी
1: मिंट कटी लेंदे
0: जी जी ता उस दे अनुसार चलना जरूरी है ना जी।
1: बिल्कुल ठीक है उन्हीं के निकटे मुन्ने बैठ गेम जंग मानो ना कि मैं निकालती हूँ बेहतर दो मिनट तक तीनों ने तीन बजे कर बारिश होगी तीन बजे तक
0: जी जी अच्छा अच्छा
1: दिखा दे बच्चे तेज आज तो कोई पता नहीं पर बच्चे मां शार्प माइंड मैडम जी आजकल
0: जी ता दिखा हर चीज का सही सदुपयोग कर दे ना ता हां सफलता पा दे ना जी।
1: जी मैडम जी जी मैडम जी
0: जिथु सही सदुपयोग कर दे ना उथु गलत भी यहां कई बार
1: बिल्कुल ठीक मैडम जी दिलड़ू वाला
0: जी जरूर अहां कोशिश कर
1: सुनी राणा गाना जी जी बड़ा बड़ा धन्यवाद मैडम जी तोड़ा
0: जी तोहां दा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। तैशो तो फिर ते हां थोड़ा दे आके वर देना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तोहां तक पहुंचा देना।

0: तो अगली जिहड़ा श्रोता ने पहले कर देन तिना कन्ने गल बात। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: जी। और कुत्थों ते बोला दे कने तुहांदा ना के जी?
1: हां, तपोवन ते बोला दे जी, वेदोराम।
0: तपोवन दा मौसम कदे है जी?
1: मौसम ता जी कण का बड़ा दे लोक अपन सेड़ी थी ता इन्नी थोड़ी थोड़ी
0: जी सेड़ी थी।
1: हां जी, हां जी
0: जी जी। ता मौसम कुथी ना कुथी अपनी करवट जिड़े से जरूर लेता है ना जी?
1: हां जी
0: जी। ता मौसम तो ही के लगदा मौसम दे अनुसार चलना जरूरी है ना जी यहां वास्ते?
1: ऐ ता चलना अपने खेतीबाड़ी च ता मौसम दे बराबर चली नहीं ना सकदे।
0: जी जी जी।
1: ਇਕੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੀ ਕਨੇ ਇਹ ਟਰਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ।
0: ਜੀ ਚਲੋ ਸਭੀ ਤੁਹਾਂ ਠੀਕ ਬੋਲਾ ਦੇ, ਪਰ ਜਾਲੂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਲੂ ਆਹਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਛੋਂ ਜਰਾ ਕੀ ਛੋਂਟਾ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
0: ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। अपना रहंदा ना जी, समय दे अनुसार हर फसल जिहड़े से उगांदे ने ते दी पैदावार रहा अपने हत्थे लैंदे ना जी। पर सही कि अगर आहां थोड़ा दिया बरखा दी और नजर नहीं दौड़ांदे ना ता आहां दी जेड़ा कणक है सभी खराब हो जांदी है ना जी।
1: हां जी जी। ये कणक दा जेड़ा ना ये है उपला ऊपर इलाका है, इस वेला जे कटाई कने जी चले कोई नहीं हल है।
0: जी जी
1: जी। चलो जी
0: जी। ता टाइम जेड़ा से हल बड़ा थोड़ा दे है जी।
1: हां जी, कोई नहीं जी, अगर होगा टाइम तो कोई अपनी मर्जी का गाना सुनाई है नहीं ता। चलो गल बात कर ली थोड़े ना ही बड़ी है
0: जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: जी। ताशो तो वहां थोड़ा दिया क्या बढ़ देना कने तुहां जो ले चल देना गीत दी और भजन दी और सुन देन इस प्यारे दे भजन जो ये फरमाइश अहां जो आई हुए गोपालपुर ते कने तिना दा ना भी जरूर तुहां तक पहुंचाना है। अजय जी दी फरमाइश है कने सभी यहाँ जो यही बोला दी ना कि गोपालपुर साइड भी बरखा जिड़े से बड़ी ज्यादा लगी हुए। चल देना सुन देना तिना दी फरमाइश छे प्यारा दिया भजन। खुशी खुशी आऊंगी।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ही प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दो शशि कने ताशो तो इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से तो हाँ तक रहन दे 2 ते 3 बजे तक तो समय दियो रहा अपना जेड़ा ध्यान है से लगा देना ता अहजो बार बार ध्यान हो दे कि उन कार्यक्रम ते जेड़ा अनुमति लेने दा समय जेड़ा है से जरूर होई है तो तुहां सारे ही अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने ने सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
2: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू।
0: बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे। सुनाई दे रहा है कुछ?
3: प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
4: अपनी थाली से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता गई उसकी, इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
5: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
6: मैं प्रकाश तांडेल।
7: मैं प्रज्ञा देसाई।
6: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
7: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
6: मकान पर, दुकान पर,
7: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
8: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
6: फोन पे बटन वाला,
7: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
6: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
8: तो लगा लो ताला,
6: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
7: तब,
6: और अगर कोई OTP मांगे,
8: बरोबर
6: लगाइए
7: मुंह पे ताला।
8: याद रखिए,
7: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
6: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
8: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
7: तो लगाओ मुंह पे ताला।
9: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
10: ठीक तो है।
9: कहाँ ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
10: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
9: क्या है?
10: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
9: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
10: झूठ बोलती है।
9: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है। झूठ बोलता है। आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका, अरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू, बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लो प्लेट दे उसको, खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है, हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए।
3: ले बेटा अपनी थाली से मत खिलाओ, उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता के उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं, आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने मतलब 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
7: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
7: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे,
7: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
7: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
5: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
7: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
8: हाय हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू, कुछ भी कहो मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
9: ठीक तो है,
8: ठीक है ना, चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
9: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
8: क्या है?
9: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
8: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
9: झूठ बोलती है,
8: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है, अच्छी तो बनी है।
10: झूठ बोलता है, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी।
8: मजा आ गया। आहा

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो रहा हूँ सचिन कपूर तुसोगे हाजिर बुझुगो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी हुनने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल न तुंदे, उम्मीद करनो तुंदे हाल चाल फिट एंड फाइन बुने तो सब खरे खरे बुने और अपने घरे खुश बुने तंदुरुस्त बुने हिन ता धर्मशाला मंच बरखा दस रही वैसे त्राई त्री कर रही थी लेकिन बुझी अच्छी गई हाँ ए बरखा। वैसे तो बहुत सारे मन वो शायद ही लगू कर दें उन्होंने कि वाह धर्मशाला में क्या सुहावना मौसम किया सो बनेगो, क्या ठंडक भरी ठंडक भरा मौसम किया सो बनेगो, क्या राहत भरा मौसम किया सो बनेगो। लेकिन एक्चुअली मैं हमेशा कहता कि बलदा कि हर पहलू रहे दुई किस्से जरूर बनते लेकिन दुई साइड अगर तो है किसान रहा दर्द दर्द हेरन शो तसो बहुत ज़्यादा है। और किसान ना रह गए हूँ तो बोलो जो भी मतलब बात रोटी खंदे तैयार है सभी का दर्द है था वाकई में दर्द है ना श्रोताओं का जो कि इस समय कणक अद्धे मणु हैगी है सो बड्डी रख रहे है ना कुछ बगड़ी गए सो बड्डी रख रही बुनी ने अद्धे मणु हैगी है सो मतलब पूरे तैयारी पर बुने कोई गाँव करते बुने कोई भूआ डाव करते बुने तो काफ़ी ज़्यादा किया श्रोताओं सो दर्दनाक है। इस समय बरखा बोनी था मतलब किसान वास्ते काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। बहरहाल कार्यक्रम तो सब हिंदी अपनी गप्पा गेन सो हूँ करते हैं अपने आर जे वीडियो जो कि सचिन कपूर सो गए। आइए जी आगाज कर दिन कार्यक्रम रहा कसकी है बल्लो के तुंदा पसंदीदा गीत तब मेरा ऐसा आता हो कुछ भी पसंदीदा गीत नहीं है सब गीत के न सो इन दी कम्युनिटी वे सिंगर है बहुत अच्छे गौरे लेकिन जहाँ कोई नवा गीत इंदा तो इंदा दायित्व बनेगा कि तस गीता जो कि है सो मनु तक रह है पहुँचान जन जन तक रह है पहुँचान तो ये हूँ दिन तू सब भी हो प्यार दिया।

0: শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন রিগুন সঙ্গে তো সব বন্ধুরা আর আমি সচিন কাপুর হ্যাঁ বিলকুল লাইভ কার্যক্রম এস সময় চল রহা তাক মোকে ফিরে বহুত বহুত স্বাগত আজি সবই হুনে আলে রে সবই শ্রোতাগণ রা বহুত সারে শ্রোতাগণ সো জুড়নে রে কোশিশ মঞ্চ বিহীন কজো কি এতন্দা আপনা পছন্দিদা কার্যক্রম হা তা চলিয়ে জি হিন্দা পেলে শ্রোতা সোগি কানেক্টেড হিন लेकिन आई थिंक डिसकनेक्ट भी पूछ गया हिन ये श्रोता बड़ी देर रह सू कॉल करो कर दे जी तू है जरूर कनेक्ट कर ले लेकिन थोड़ा करे सबर फल मीठा बुंदा नमस्ते जी
1: नमस्कार भाई
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: भाई गाना सुनना
0: जी कौन बोलन देन और कड़ी तो बोलन देन
1: मैं विजय कुमार बोला ना कोतवाली बाजार
0: से अच्छा अच्छा अच्छा कोतवाली लगे रहे बरखा के ना लग रहे ठीक ठाक लगी हो तो क्या है बलना चंदे ने इस समय बरखा बुच्चू कर दिया पूरा कणक के सो पकी छूरी गेहूँ के सो पकड़ो और पान लूरा पेड़ पर इस समय बरखा बुच्चू कर दे क्या बलना चाहते हैं क्या है तुम्हारी भावना है ना इस समय
1: थोड़ा गलती है ना एक प्रोग्राम
0: अच्छा क्या बोल क्या बोलूँ जी
1: मैनेजर
0: भले ही बंदा है मैनेजर घड़ी बुरे बंदे चलिए ठीक है जी जरूर होने ले तुसु ये गीत नमस्ते एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन रिगूंज है बने रहने तू सोगे कचो के कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा और बिल्कुल श्रोताओं इस कार्यक्रम में कुछ एक खास मनु होगी तू सुहा है जरूर हमेशा था रूबरू करवंदे आए और आगू भी करवाना हा लेकिन अब थोड़े करेगी यार श्रोताओं सो इस समय चल रहा इलेक्शन का दौर तब हो सकता कुछ एक नेता के तिया होगे जो इनकी कम्युनिटी रे नेता तिया हो अकमो के फिर तुस होगी कि सो है रूबरू करवान और तो सब ये जरूर बल्ले सकते हैं पूछी सकते हैं कि क्या करेगी या सो बुझ सकते काम बुझ सकती गल क्या करी बुझ सकते गल काम किए करी बुझ सकता क्या कुछ सोच देन और क्या कुछ विचार कर देन हालांकि श्रोतागण चलिए तो सब भी जुड़ी सकते हैं वैसे श्रोता 708-8-8-709 पर कॉल करी करी नंबर आग मौके आस्ते आस्ते बली छी 708-8-8-709 पर तो सब श्रोता कॉल करी सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो साझा करी सकते हैं श्रोता इस समय चलिए यह तुस धर्मशाला का मौसम अगर दसी हुए तो मैं दसो कि बरखा लग रही है और श्रोता सूगे कनेक्टेड है नमस्ते जी
2: नमस्ते
0: जी नमस्ते
2: ठीक ठाक न
0: बहुत बढ़िया जी तो बल्ले तो ठीक ने
2: अरे ठीक ना थोड़े
0: अच्छा करे लग रहे ते कुण बल्लुं देन ते कड़ी थों बल्लुं देन जनाब सत्यानाश बल्ला सत्यानाश बड़ा सत्यानाश हुआ कणकरा गीत ता तुस हुनाना हुनाना सु पर ला थोड़े करे प्रश्न ला के की करे बुल्ला काम सीधा नाग छत्री क्या चाहता ला
2: नाग छत्री मारा ये गंदा कोई ना मंदा कोई ना क्या करना सी करना
0: है ना जी
2: ते तेरे जाग पे द्वारा बस रहेंगे और बस रहो
0: सही गल है अच्छा जी जनाब कौन देना गीत हूं ना तुसु
2: रुआ खेरी गल्ला लानी
0: रुआ खेरी गल्ला लानी
2: हाँ सूरा खेरे मगर जी
0: अच्छा चित्र फुल ठीक है जनाब ठीक है
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਲੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ
1: ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ
0: ਜੀ FM बैंड 91.2 MHz पर तो सब बंडुए ने समय आरजे सचिन कपूर सो किया हूँ तुंदा अपना रेडियो जो की हा और बल्लू करदा 91.2 MHz पर तुंदे अपने FM पर तुंदे अपनी फ्रिक्वेंसी पर इंदे अगले श्रोता सोगे कनेक्टेड है नमस्ते जी
1: नमस्ते सचिन जी
0: नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल
1: बस ठीक है बरखा लग रही है
0: हाँ जी हाँ जी तकै भावना इच्छु कर दे है बरखा हेरे करे क्या प्रतीत बच्चो कर दा अंदरा तो कि ना महसूस बच्चों दा
1: उन्हें तो ठीक है बरखा अपन कान का वास्ते बुरी है ना
0: बुरी है
1: फसल फसल खराब कर देनी है ना सर
0: बुझे के यद देता
1: मनु नागा ना मनंदा दे कान का वरना लगी बंदा जर पाटा
0: हाँ ना जी फिर बंदे
1: नाग भी जरूरी मनाना ना
0: बड़ा इम्पोर्टेंट है बड़ा जरूरी है तो फिर क्या बोल दें मनु किया है क्या नाग नागे दूं दी तुरा इन्हें इन्हीं अमर है दूं दी तुरा
1: नागे ना दूं दी तुरा मनु है दूं दी तुरा
0: सो है ना इंसान जो कभी भी अपना
1: नाग सच्चा अपनी जगह
0: बिल्कुल सच्चा मनु के सो कभी गलत बुझ सकता तू है बल्ला कभी मंदा मनु अपनी गलती की हाँ यार मेरी गलती कभी हुनो तो है कि कोई मनु है
1: मनु तो कभी ना मालदा मन तो मालदा इन्दी तो गलती आए
0: गलती आए ना सेरे गलती बुल्ले ताजकल मतलब अलके था अलके बच्चे अंदर भी इतना ईगो आ गया था अपनी गलती ना मानने
1: ना ना बल्दे इंदी ता गलती ना बोई ता ना बोई
0: बहुत कम लोग ने बहुत घट लोग ने जी जो अपनी गलती के ना सो स्वीकार कर देने मंदन के हाँ इंदी गलती या जो थो एक गलत हुआ ना ऐसे बहुत कम ना
1: नाग आपने रुकावर चली ये तरह सब कुछ करिंदा
0: बिल्कुल बिल्कुल इंद्रुनाग महाराज जी भी छत्र छाया में वैसे है रे कर दें तो थोड़ा करी पहले ना बड़ी जातर जनेत्रा बुंदी थी बड़े फसल बढ़ने थे पहले नागा जो कि सो मतलब प्रसाद चढ़ता थो जात्रा गंदी थी है ना
1: सब कुछ बुंदा हो जी
0: सब कुछ बुंदा थो बहुत सारे ग्राह के इनसो कट्ठे बुझ गए जात्र दिन दे थी है ना बहुत सारे घर के इनसो कट्ठे बुझ गए जात्र दिन दे थी कि ऐसो अब फसल बढ़ने था नाग छतरी रखे रखे तब है जद मनु मनु बल्दा सुला टाइम ही नहीं है
1: टाइम आई ना बल्दे आसी उसका काम नहीं बड़े बड़े इन्हें बल्दे
0: काम बड़े बड़े अच्छा ओपरों चलो काम भी बुला था नौकरी कोई इन्हें बेचांदा बुला था कस की भी नौकरी ऐसी ऐसी बंदी की सोच ही ना सकता है पता ना क्या सिस्टम बन रहा इस समय और क्या ये आ कि पहलकने मनु ले पता ना कहूँ मुझे तो लगता पहले भी 24 घंटे थी आज भी 24 घंटे लेकिन पहलकने मनु ले किया सो सब सिस्टम थो सिस्टम आओगे सो जात्रा जनेत्रा दिन दे थी है नागो पूज दे थी है फसल बढ़ने हो पहले सब जो भी इनकी मान्यता ने सो पूरी कर दे थी है ना जो भी है मान्यता मंदिर कूल जाओ चढ़ाना जी हाँ भी जो भी अपनी अपनी मान्यता अनुसार है कर दे थी लेकिन अस्कनी डेट में बहुत मुश्किल पूछ रहे सब का मतलब टोटल बंद ने तो है मन्ना
1: ठीक बल्लू कंदे पहल के मन जो विश्वास थू ते आजकल जेड़े न तिया विश्वास ही आए ना
0: सो नट्टा रे विश्वास कर दे आजकल
1: आजकल जो बस बोलते हैं नक्शा मन दे रहा है झटपट बोलते मौसम किनारा
0: बस सो ही लगो तो बोलना आजकल जो जनजी जनरेशन आसो इति अंदर नट अंदर हेर दे आ
1: हां जी हां जी
0: है ना कि दत्ते मौसम की लिख दे टुडे वेदर इन धर्मशाला टुमारो वेदर इन धर्मशाला तो सो बस बुझगन द काम तेरे तसा बरा तले जनाब कुंदन की थुन ले
1: गाना सुन नैरी उबरिया सिवे आसन लाया
0: अच्छा
1: नहीं
0: ठीक है जी जरूर होने ले
1: धन्यवाद
0: जी शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर रेडियो गुंजन री गुंज हो गई तो ऐसा बन रहे ना और हूँ सचिन कपूर हाँ तुंदा अपना आर जे फिलहाल इन अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
3: नमस्कार महाराज जी।
0: जी महाराज नमस्ते नमस्ते ठीक ठाक ना
3: दया उस मालक दी मौज आ जी।
0: हाँ बिल्कुल मौज
3: जनाब तो
0: जी जी जी तुंदी आवाज कटी गल्ला
3: कने ना हां जी जेड़ी गल्ला कने ने बिल्कुल सच्ची कने जी
0: जी
3: क्योंकि पहले देवी देवते पूजदे ही है
0: जी
3: अपना इष्ट की परमात्मा ही पूजदे ही है
0: हां इष्ट देवते
3: अब हां अब छन्नी बैठे सारे च मानु इंसान झूठा परमात्मा ते देवी देवते कहने सत्य नु के उसने बनाउदे नए हां
0: हां बिल्कुल
3: उस मालक भी हेरदा कि इंसान ना मनु करदा ता वे क्या करना है क्या देवी देवते मानू छड़ी देखे है अपने परमात्मा छड़ी देखे आप तू सच बने देखे पर देवी देवते परमात्मा झूठा बनाई के रही ताइए ऐसी गल्ला होनी ना वे चलो परमात्मा थोड़ा मता दिखू कर पर गरीब मानु भी बड़े ना
0: बहुत ज्यादा
3: किन्या ना परमात्मा दिखू कर पर ना बुना कि अजकल एरा कणक मैं अज बनू सूरा एरा किनारे ते कणक हुकना पाऊ दी ही
0: अच्छा
3: टाउन डाडे किनारे पुजे तो बरखा पुजो अखिल बड़ी बारी बरखा बनुमा यो सी है तो क्या करना वे
0: है ना
3: हां जी लग रही है बरखा ले
0: लग रही है रे भी लग रही जी ठीक ठाक लग रही
3: हां जी
0: चलिए क्या कर सकते हैं कुदरत अगो गसी रही ना चलदी जी मनु अपना अपने आप तो चला ही सकदा ना
3: जी
0: लेकिन सेरे अगो ना चल दी सिरे
3: सेरे के कसी ना चल दी जी
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
3: पहले ऐसा बंदा है ऐसा ऐसा मन बंदे ही है कि बंदे देवी देवते धूप टिका दिया तब बरखा एकदम चुकी गंदी है
0: चुकी गंदी थे हकीकत
3: हाँ मन जो पता ना मैं यहाँ में निकाल दी ना बंदे ने जबरे धूप बंदे ही है तो बंदे परमात्मा ने हम निम्बल कर दे बोल तो बस दो मिनट बन गए निम्बल से धूप लाई पंदी है
0: लग पंदे धूप जुड़ा ਉਹ ਕਰਨੇ ਰੇ ਦੇਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀਨੇ ਰੇ ਦੇਰ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਾਰ ਦੀਨੇ ਵੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਪਰ
3: ਹਾਂਜੀ ਅਵੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਅਵੇ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਅੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦਾ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਦਾ ਨਾ ਚੀਦਾ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਤੋ ਹੁਣ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਮੇਰੀ ਚਿਕਣੂ ਦੀ ਕਾਛੀ ਬੈਰੀਆ ਬਾੜਾਂ ਉਹ ਬਾੜਾਂ
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ चलिए ठीक है जनाब जरूर तू सोएगी थोड़ा ले है
3: ठीक है महाराज जी
0: ठीक है जी नमस्ते
3: नमस्कार जी
0: तो श्रोता इन सभी कॉलर रह रहा है होप सो और भी लेकिन भी 21 मिनट बच गया है गीता के होना हुआ आइए जी फरमाइश रहा दौर के आसो पूरा कर दिन बने रहे तो सब आर जैसे सचिन कपूर सो गए और फरमाइश रहा दौर अब धीरे धीरे के आसो पूरा कर दे

0: शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉ रे कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर देने अपने अपने रेडियो सेट में तो सब श्रोता भी कॉल कर सकते हैं जनाब 7088879 पर कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं नंबर आक मौके फिर 7088879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं अगर तू वो लगता कि कुछ जानकारी किया सो रेडियो मंच साझा करने लायक हा मनु जो दसने लायक हा कि हज़ार लख मनु होने कर दें त्यारे तिन्यों थोड़ी अवेयर करने वाली कुछ जानकारी हा तो सो तो है किया सो दे सकते हैं छो तो इस नंबर मंच कॉल करी करी है ना जी। तो चलिए अभी थोड़ा करी आगू चलते हैं बर्फ है वैसे कम तो खराब कर ही दिता है काफ़ी ज़्यादा और मतलब कांगड़े ना करो ये मैं सोचा कि धर्मशाला कांगड़े में लग रहे बल्कि हिमाचल प्रदेश में सक्रिय अगर मौके फिर ही तू वो दसना चाहता मतलब साधारण भाषा अंदर बलूँ अपनी हथा मौसम का मिजाज के असो लगातार बदलेव करता तो ठेरी वजह के असो कुछ एक क्षेत्र में बरखा बोया और धर्मशाला में काफ़ी ज़्यादा तेज़ तरार की असो बरखा बोए सो तो ये बरखा रहा सिलसिला की असो इस वक्त भी जारी है और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने दसो कि वाजे व त्राई और चौर मई जो यानी कि दुत्ते भी और परोए भी चौर मई जो किया सो पंज जिला में किया सो ओलावृष्टि वह 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो तेज़ हवाएं और मतलब बिजली बुजली कड़की सकती है ऑरेंज अलर्ट किया सो जारी कर रहा जनाब पंच जिला वह ना है जरूर दस लें लेकिन इन दे श्रोता के अनुश्वास होगी कनेक्टेड है। नमस्ते जी।
1: नमस्कार सचिन
0: जी। नमस्कार जी। नमस्कार
1: जी।
0: जी कौन बलुंदन और कड़ी था बलुंदन
1: बोल रहा अशोक।
0: अच्छा जी अच्छा जी ठीक ठाक ने
1: ठीक ठाक जी
0: और कर करे लग रहे
1: बस लग गए कम कर मैं दुकान टेलर का काम कर।
0: अच्छा लग रही बरखा तुंदी बस से भी
1: ना नहीं लगी।
0: अच्छा इन्हें बरखा
1: बरखा बिल्कुल नहीं हुई।
0: क्या बात है क्या बात है क्या है मौसम की इस समय धूपा
1: बदल धूप दो तो नहीं
0: बदलते धूप गर्मी रहा एहसास आ गई थोड़ी धर्मशाला की साइड विच हुंदी ठंडी हवा है।
1: हाँ जी हवा तो घर चली गई ठंडी हवा चली।
0: अच्छा
1: एक गल और इधर हरेलू उधार जेड़ा ना जी।
0: हाँ जी
1: ए तकरीबन सारा कटे गया फसल ना कटाई भी और कौन को सारी।
0: अच्छा अच्छा
1: सबसे पहले बेबल। हाँ जी।
0: अच्छा
1: 14 अप्रैल जो शुरू हुई यही बढ़ाई है
0: इस समय बिल लें तो है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: चलिए इस किनारी जी कणका लेट पकदी ना।
1: हाँ जी हाँ जी नहीं आज है कांगड़ा रजूल साइड को जान ना।
0: हाँ इस साइड भी है कांगड़ा मटोर मटूर साइड भी है ले।
1: हाँ जी
0: जी तो जनाब कुंदन की थोड़ा पसंद कर ले
1: गाना कोई भी सुनाई दे टाइम थोड़ा हो।
0: ना ना जरूर बोले तू है फरमाइश बोले कुंदन ने होना तू सो कमाल
1: है भगवान ने सुनाई दे कोई जो दिए ने
0: रीता कोई भी प्यारे दे गीत होंदे है ना जी।
1: हां जी कोई भी
0: ठीक है जी धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही है जी फरमाइश और दौर के सो पूरा करते चलते हैं।

0: शत एफ एम बैंड इक्यानवे दशमलव दुई मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा हूँ कर देना रेडियो जो कि सचिन कपूर सो क्या यह कार्यक्रम जो हगो बढ़े इन शो तो अगली फरमाइश दौर की सो भी जरूर है पूरा कर लें लेकिन तथों पहले शो तो दसना चाहता कि कांगड़ा अंदर पांच जिले आंदर सो करता तो था जिला नंबर आकर कांगड़ा चंबा तो तू पता है बोने बोने है ना तो इड़ी बरखर दौर गया सो माफ करे शो तो बरखर दौर की इड़ी सो जारी ही रहना हाँ सो दत्ते भी बरखा गया सो संभावना पूरी पूरी हा कि दत्ते भी बरखा गया सो इड़ी बुने बुने सो सतर्क रहे और जो आऊँ तय बलना चाहो जो हले बढ़ ना लुगरे कणका जो सो रुके गच्छा फिलहाल अगली फरमाइश भी असू पूरी जरूर करने हैं इंदे बड़े अच्छे प्यारे भाई ने मुनीश त्यारी फरमाइश भी आ और अक और इंदे श्रोता थी त्यारी फरमाइश भी कि कमल नेहरिया कोई गीत किया सो हुना हा शोधक तू सभी आऊँ जरूर दसना चाहता कि एवं कि सो चुनाव वह सिलसिला जारी है बिगल बजी के छोरे और इंदे स्टूडियो बंच और खास कर इस कार्यक्रम में आगे सो इंदे जो अपने के धीरे नेता ने जो भी एमएलए माफ करा जो भी इंदे प्रधान खड़ रहे उप प्रधान खड़ रहे वार्ड पंच खड़ रहे ने या फिर काउंसलर खड़ रहे ने सो जरूर इस कार्यक्रम में इन्हें ने और तो सो की गलबात तैयारी भोने हाँ शो तो और तो है जरूर जुड़े करे कि ऐसा तीनिया तो सवाल कर सकते हैं फिलहाल तय किया है कोशिश करूँ दिन एक कोशिश है कि जो कि लाइव में ना कर रहे जो कि लाइव रहा दायरा किया सो काफ़ी बड़ा जो कि भरमौर चंबा तो सब भी पता कि तड़ी तो मींद शौदा के अनुसार जुड़ देन है ना हो सकता है रिकॉर्डेड ही प्रोग्राम हुआ लेकिन जो भी बोला तो उसको जरूर पेश इना हा ताजी वैसे तो है उन्नति री और क्या ना सो हमेशा था रिव रहन उन्नति वे पद पर किया सो हमेशा था चलू कर देन लेकिन और किस तरह दो पहलू ने सचिन कपूर हमेशा बोलता और बार बार बोलता कजो कि अक्साइड उन्नत है तो दो किनारी है रा कि तो है 13 साल रा बच्चा किया सो बनोई रा रहने आला हा और जिला कांगड़ा आज में जो नशे के खिलाफ अभियान चल रहा हा शो तो तड़ी पुलिस है किया सो गगल क्षेत्र बनोई में किया बड़ी कार्रवाई कर दे कि अशतों सो बस में अकेले सफ़र करो कर दत हुए 13 साल रहा बच्चा 130.48 ग्राम चिट्टा गया सो बरामद हुआ खबर होने के लिए रोंगटे जरूर खड़े हुए खड़ी है बुने सभी रहे बहरहाल इन श्रोतागण आसो के कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
1: नमस्कार सर
0: नमस्कार सर नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय कुण वल्लुन देन और कड़ी तो वल्लुन देन
1: प्यार सिंह बल्लू वरदा होड़ी चुनौता ग्राम मेरा जी
0: क्या बात है भरमौरा रे गल करी थी कि तू है फोर फोन खड़कते हैं
1: ठीक ठाक बढ़िया
0: बहुत बढ़िया जी तो है वाला तो ठीक ठाक ने
1: हाँ जी जी बढ़िया
0: और करे लग रहे
1: करे लगना जी हाँ एक बेट पाल का बस अगली बड़ा
0: अच्छा क्या बात है तो इस समय प्रेजेंटली मतलब इस समय कड़ी इन तो है एट दी स्पोर्ट कड़ी इन होली
1: एट दी स्पोर्ट होली हूँ अपने मेरा ग्राम पंदा चुनौता हूँ सर आया था
0: अच्छा अच्छा कदे है इस कनारी मौसम कदे है जी
1: मौसम सर पे बर खरिया को फंड का सुनिए आज तो धूप लग गई बढ़िया
0: अच्छा फंड पे है रे बे
1: हां जी हां जी हां जी
0: तब तो है बेजु इन दी कनारी भी मतलब है
1: हां ते रहूं घर जिंदा चलेगो जोत्ता भी ते आई होनी है रे भी
0: हां तो जोत्ता ते पार ते धर्मशाला
1: हां जी
0: तो तू है बजे फंड
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: अच्छा तो तुंदे ग्रां तो आगू भी ग्रां जी है भरमौर इतना ना विजिट कर रहा
1: होली होली मेन सहरा तो ती आगू ग्रां पे गए देओल पे गए बजोल पे गो आगू लक के आई माता हूं आगू और बड़ा कर कर ग्रां ने
0: अच्छा अच्छा
1: हां जी
0: क्या बात है क्या बात है
1: टेम सब गो लक के आई माता रा मंदिर आता ती हूं आगू भी ग्रां पे आगू
0: अच्छा और
1: साइड हां जी
0: क्या बात है
1: हां जी हां
0: जी चलिए जी तो भरमौर तो क्या फरमाइश है जी असु
1: फरमाइश सुनाई दे सर घुग्गी है मारू अगेरा
0: अच्छा हां जी मारू अगेरा ता ठीक है जी
1: हालनु तेरा की मेरा
0: हां जी हां जी पोहालनु तेरा की मेरा
1: हां जी हां जी
0: जरूर होना लेस गीता जो जी और कोई

0: गुंजन ऐप दे थ्रू हुंदे थी। हाँ
1: अच्छा क्या बात है।
0: जी हाँ
1: चलिए
0: जी
1: रोज उठते तो जाने भी कोई दूसरा लगता है कि कोई स्पेशल गेस्ट इच्छू करता कोई नेता आइडिया रहा
0: हाँ
1: अपना
0: जी
1: कम्युनिटी रहा कुछ आ तो है तीनों भी सवाल कर सकता है अगर तुम्हें जहन में घूमदे बुन कुछ
0: बिल्कुल
1: सवाल तथ्यों रिलेटेड था।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर पिच्चो ही ना रीता बुरान छूरे हिंदी लोग का एक आइडिया रे
1: जी जी
0: फेमस।
1: जी जी
0: सो हुनु प्यारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगू तो थोड़े ने कनेक्ट ना बजे बुझ सके था दाड़ी कुछ सिग्नल प्रॉब्लम थे। हाँ
1: अच्छा।
0: जी हाँ जी ठीक
1: चलिए ठीक है जी जनाब धन्यवाद
0: है सर ठीक है धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद। तो कमर्शियल सिलेंडर भी 900 लगभग 1000 रुपये रखा 7 रुपये बचने 1000 रुपये बल दे खरा लगूंदा है ना। तो 1000 रुपये रे आसपास के सो बुझ गो लबई कमर्शियल सिलेंडर महंगा कमाई बद उन्हें कर दी थे खर्चे बढ़ दी गच्छू कर देन क्या चक्कर लाए। और खर्चे बढ़ दो कर देन महंगाई बढ़ू कर दी हा बुरा हाल हा। फिलहाल तो है चूड़थों पांच के ने सो अपने कार्यक्रम जो एंजॉय कर दें ताइए जी इंदे बड़े प्यारे भाई मनीष अकमो के फिर तुंदा ना कि सो लीता जी जनाब तुंदी फरमाइश पूरी कर दें लहरिया साहब रहे गीत किया सो हूँ आइंदे अक्की भाई रे तो है गीत होनू कर देन मनीष जी दुए दुए भाई रे तो है टिकटा कटाई छू कर देन दिस इज नॉट फेयर।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गया सो चल रही है। तो थोड़ी का खेल समाचार है किनारे चलिए श्रोतो। तो आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स रखिया सो आपस में मुकाबला और आज करो या मरो री स्थिति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्रोतो, अगर आज अपना अस्तित्व बचाना है तो आज धोनी में से मतलब दोनों टीम आ गए ना सो पूरा पूरा जोर लाओ कर दी ना कि इनका अस्तित्व किया सो बचे रहे और रह इस दौड़ में गया इस रेस में गया सो जिंदा रहन जिंदा रहने वास्ते किया सो एफर्ट्स लाना पैने मेहनत तो करना ही पैने और किस्मत रहा किया सो बड़ा साथ रहता क्रिकेट में श्रोतो। तो भैया कार्यक्रम में जानकारी रहा सिलसिला ये चलते रहना श्रोतो। अगली फरमाइश टूटी मेरे छिकणो रे काछी वो भाड़े मुंजो

चलिए श्रोतों, कार्यक्रम FM बैंड 91.2 मेगा हर्ट्ज पर तो हूँ कर दिन हिंदी अपनी गप्पा हो रहा हूँ सचिन कपूर है बिल्कुल लाइव। चलिए बोलते ना कि जिसेरे माँ खुश बुआ सो दुनिया में सब थो खुश नसीब इंसान हा, खुश नसीब किया सो बच्चा हा, और जिसेरे माँ खुश न बुआ सो दुनिया रे सब थो बदनसीब इंसान हा, और जिसेरे माँ हमेशा दुख ही रहा सो दुनिया में मुझे लगता कि वाकई मैं बहुत बदनसीब हा। और शायद आऊँ ये भी मंदा कि अगर तुम्हें माँ खुश नहीं तो है मतलब नलायक हिन, तो है नकम्मे हिन, और तुसु अंदर सो अपनी मौज हो खुश न रख सकता था, सो धन दौलत पैसा ढेला किया सो मायने न रखता, अपनी मौज हो खुश रखने वास्ते कि सो एफर्ट्स जरूर लाओ करा। और माँ या कैसा सच्चा रिश्ता जो हमेशा सोगी बन दिया और साथ दिन दिया शोतों था अरिता पुरहान रहा ये प्यारे दे गीत किया सो है हुन दिन मौ पर इन्या गु रहा, बहुत ही प्यारे दे गीत आइया बने रहे तो इस बार जे सचिन कपूर सोगी।

हाँ बिल्कुल श्रोताओं की मन मत आई फरियाद आई उमंग ही तस्वीर कि जो इन दिमाग हमेशा स्वस्थ रहा खरे रहा तंदुरुस्त रहा और हंस दे खेल दे रहे है ना। चलिए बाकी गिले शिकवे के सो बुंदे रहते सभी रहे है ना। अज शशि भी बल्लू कर आए कि हम अपनी मम्मियों की गोली कर आया तो कुड़िए मतलब बुंदा या श्रोताओं की मौत भी डांट के सो डांटना बुंदे प्यार बुंदा लाड़ बुंदा प्यार तस्वीर प्यार मना। लेकिन हर कोई ये फरियाद करता चाहे आऊँ आ चाहे शशि आ जाए वुचिका जाए एवरीवन हर कोई ये फरियाद करता कि इंदी माँ स्वस्थ रहे तंदुरुस्त रहे और हंस दे खेलते रहे। तो जी आऊँ सचिन कपूर ले लेनो इजाजत का जो कि आकर लाश फरमाइश हसो कर दे पूरे नमस्ते धर्मशाला हंस दे रहे मुस्कुरंदे रहे और अपनी मौज हो के आसो खुश रखा तंदुरुस्त रखा।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

कनिका आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ।

0: पास उलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
2: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू।
0: बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे। सुनाई दे रहा है कुछ?
3: लो प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
4: अपनी थाली से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता गए। उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं है। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब जब क्या खाना खाने में 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
5: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
6: मैं प्रकाश तांडेल।
7: मैं प्रज्ञा देसाई।
6: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
7: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
6: मकान पर, दुकान पर,
7: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
8: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
6: फोन पे बटन वाला,
7: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
6: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
8: तो लगा लो ताला,
6: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
7: तब,
6: और अगर कोई OTP मांगे,
8: बरोबर
6: लगाइए
7: मुंह पे ताला।
8: याद रखिए,
7: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
6: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
8: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
7: तो लगाओ मुंह पे ताला।
9: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
10: ठीक तो है।
9: कहाँ ठीक है, न चीनी है न दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
10: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
9: क्या है?
10: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
9: आहा, बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा,
10: झूठ बोलती है।
9: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है। झूठ बोलता है। आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

नमस्कार श्रोतो, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरचे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। कैसे हैं आप सभी? होप्स हो आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में जो है वो व्यस्त होंगे। देखिए, मस्त रहना भी लाइफ में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और व्यस्त रहना भी जो है वो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आप को व्यस्त रखिए, सूखे नशे से जो है वो दूर रहिए, आपका जीवन जो है वो सरल तरीके से व्यतीत हो जाएगा, सरल तरीके से जो है वो चलेगा। श्रोताओं, मैं सचिन कपूर हूँ और आप हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हो, हम सभी साथ साथ रहेंगे, लेकिन 7 बजे तक नहीं, 8 बजे तक हम सभी साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ हैं। जी बिल्कुल जी, धर्मशाला की शाम और धर्मशाला का मौसम, ये अपने आप में ही बहुत कुछ जो है वो बयां करते हैं, अपने आप में ही बहुत स्टोरियां जो है वो लिखते हैं श्रोताओं, है ना जी। आप सभी सोच लीजिए, मई की 2 तारीख है और आज अभी मैंने जैकेट जो है वो वेयर की हुई है, इस समय मैंने जैकेट वेयर की है। आप सभी सही सुन पा रहे हैं, मैंने जैकेट पहनी है 2 मई को, यानी कि धर्मशाला की बरसात का कोई भरोसा नहीं है और घोड़े की लात का भी कोई भरोसा नहीं है, कब पड़ जाए किसी को नहीं पता श्रोताओं कि कब क्या हो जाए। तो इस समय जो है वो काफ़ी ठंडा मौसम जो है वो है धर्मशाला का, ठंडक भरा मौसम है धर्मशाला का, लेकिन हर किस्से के 2 पहलू जो है वो हमेशा से रहे हैं श्रोताओं। तो इस समय जो है वो मौसम बिल्कुल ठंडा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के दिल जो हैं वो टूटे हैं जी। बिल्कुल, बारिश की वजह से जो है वो गेहूं की फसल ख़राब हुई है, धर्मशाला में हुई है, और जहां जहां भी बारिश हुई है आज भी हुई है। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि कल 3 तारीख को भी जो है वो कांगड़ा चंबा शिमला में बारिश बताई है, तो कल भी जो है वो बारिश है। तो आप सभी इस चीज़ के लिए सतर्क रहें, अगर गेहूँ काटने की सोच रहे हैं इस समय धर्मशाला के जितने निवासी हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि फिलहाल जो है वो रोक लगा दी जाए गेहूं के कटाव में, है ना जी। गेहूं को ना काटें इस समय और रोक जो है वो लगा दी जाए, आफ्टर 3 या 4 के बाद मौसम हो सकता है खुल जाए, तो तब आप गेहूं जो है वो आराम से काट सकते हैं। बहरहाल, साथ ही साथ गीतों का सिलसिला जो है वो ज़रूर चलेगा श्रोतों, है ना जी। तो आइए सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा गीत आप सभी के वीडियो सेट पर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, आंखों में बसे हो तुम, दिल में बसे हो तुम। और श्रोताओं, आप सभी तो मेरे बिल्कुल अंग अंग में बसे हैं। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज के विचार की ओर चलते हैं। श्रोताओं जी, बिल्कुल मौसम तो काफ़ी ठंड भरा जो है वो रहा है श्रोतों, और ऐसा ही मौसम जो है वो सभी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जो हमारे मतलब ये आप मजबूरी भी समझिए, क्योंकि हम सभी के लिए जो है वो गेहूं बहुत ज़रूरी हैं, गेहूं की फसल बहुत ज़रूरी है। किसान जो हैं वो इस समय बिल्कुल स्ट्रगल पर है, संघर्ष कर रहे हैं, और केवल संघर्ष किसान ही नहीं कर रहा, हम सभी जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं इस समय श्रोतों। तो ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को अब इस आज के विचार की ओर। समय की कीमत, अखबार से पूछो, सुबह की चाय के साथ आता है और शाम की चाय तक रद्दी हो जाता है अखबार। जी बिल्कुल, इसलिए ज़िंदगी में जो करना है समय पे कर लो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम अफसोस ज़्यादा देती है, ये हकीकत है श्रोताओं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है तो वो समय रहते जो है वो करनी चाहिए, है ना। ये बड़ी सही बात कही है किसी ने कि समय की कीमत तो आप पूछिए ज़रा अखबार से, जो सुबह की चाय के साथ जो है वो इंटरेस्टेड होती है, अपनी वैल्यू बनाती है, उसे संभाल संभाल के रखा जाता है, और शाम की चाय तक जो है वो रद्दी बन जाती है। इसलिए ज़िंदगी में जो करना है, जो भी दिल में तमन्ना है, जो भी दिल में इच्छा है, जो भी दिल में ललक है, उसे समय रहते जो है वो कर लो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती है। चलिए कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आंखों की बात की थी तो लीजिए ये प्यारा सा नगमा आप सभी के वीडियो सेट पर।

वाकई में नशा तो मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। मोहब्बत बहुत ही अच्छी चीज़, बेहतर चीज़, बेहतरीन चीज़, प्यारी चीज़ होती है। FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शतों तो गर्मी से बचने को जो है वो बिल्कुल शुरू हुए थे पहाड़ों की दौड़। और ये दौड़ जो है वो राजधानी शिमला पहुँच कर 70,000 वाहन जो है वो पहुँचे। ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने को 250 जवान जो है वो शिमला में तैनात किए। शतों मैदानी राज्यों में इतनी ज़्यादा तपतपाती गर्मी है कि आप सभी रूबरू होंगे इस चीज़ से। तो पहाड़ों की दौड़ जो है वो शुरू की है, मैदानी इलाकों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है आजकल। और मैदानी राज्यों में भारी संख्या में जो है वो सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला में भी पर्यटन शिमला में भी जो है वो

कठिन सीजन ने तेजी पकड़ ली है। श्रोताओं, शिमला पुलिस के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में 70,000 से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो पहुंची है। बिल्कुल, और इसी के साथ मौसम की बात भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। श्रोताओं, 5 ज़िलों में जो है वो ओलावृष्टि और बिल्कुल बारिश की संभावना है कल और 4 तारीख को भी, कल और परसों। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ एक बार फिर से श्रोताओं मौसम का मिजाज जो है वो लगातार बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में राज्य के कुछ एक क्षेत्रों में जो है वो रुक रुक के बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में 3 और 4 मई को 5 ज़िलों में ओलावृष्टि व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो तेज़ हवाएं और चलने का जो है वो तेज़ हवाएं चलने का जो है वो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक ज़िला चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में 3 मई को जो है वो 3 मई को वह कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला में 4 मई को जो है वो ओलावृष्टि के साथ तेज चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य ज़िलों में 3 और 4 मई को येलो अलर्ट जारी किया है राज्य में। हालांकि इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं राज्य के अधिकांश भागों में 7 मई तक लगातार बारिश होने के आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल श्रोताओं, तो जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और दिल की बातें भी यूं ही चलती रहेंगी आप सभी के वीडियो सेट पर। तो लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर कि हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल ही साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। तो आइए श्रोतो, वक्त हो गया 6:30 और अब वक्त हो गया वेड़ी गुंजन में एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: शोध एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और आज आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ सीएसके की करो या मरो की स्थिति जो है वो है सीएसके और मुंबई इंडियंस की। बिल्कुल, अगर उन्हें अपनी इस दौड़ में जो है वो जीवित रहना है तो कहीं ना कहीं फिर करो या मरो वाली स्थिति है आज, और वो उन्हें करनी होगी। प्लेऑफ की दौड़ में अगर उन्हें बने रहना है तो आज अस्तित्व की लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी दोनों टीमों को। जी बिल्कुल श्रोताओं, पूरी जानकारी देते हैं। अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें। आईपीएल में जो है वो आज करो या मरो की, शनिवार के दिन करो या मरो की स्थिति है। करो या मरो के मुकाबले में आमने सामने होंगी दोनों टीमें, जहां दोनों का मकसद होगा प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना, और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने की उम्मीद जो है वो जिंदा रखना है। अगर उन्हें उम्मीद जो है वो ज़िंदा रखनी है तो आज जी जान से जो है वो मेहनत करनी होगी। आईपीएल के दो सबसे कामयाब टीमों का सफ़र अब तक जो है वो निराशाजनक रहा है श्रोतों, और दोनों लय पाने के लिए जो है वो जूझ रही है। सीएसके के लिए जो है वो आज जिस पिच में, आज जिस स्टेडियम में खेलेंगे श्रोताओं, वो हमेशा से फ़ायदेमंद रही है, लेकिन इस बार टीम का वही पुराना असर जो है वो नहीं देखने को मिला है, और वो पुराना असर जो है वो कहीं ना कहीं खो गया है। सीएसके की बल्लेबाजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, खासकर मिडल ओवर्स हैं उसमें जो बल्लेबाजी होती है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। गेंदबाज भी दबाव में जो है वो बेहतर नहीं कर पा रहे हैं श्रोता। बताओ, मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन भी इस सीजन कुछ उतार चढ़ाव वाला ही जो है वो रहा है। श्रोताओं, टॉप ऑर्डर के अच्छे खेल के बावजूद 5 बार की चैंपियन टीम को कमजोर मिडिल ओवर और गेंदबाजों ने निराश किया है। सीएसके को उम्मीद होगी कि उसके स्पिनर जो है वो कहीं ना कहीं आज धीमी पिच पर फ़ायदा उठाएं, जबकि मुंबई की टीम स्पिन का सामना करने के लिए जो है वो पावर हिटर्स पर निर्भर रहेगी। चेन्नई और मुंबई की मौजूदा जो फॉर्म है वो देखते हुए कोई भी टीम साफ तौर पर जीत की दावेदारी नहीं लग रही है इनको देखकर श्रोतों। तो चलिए आज देखते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और हार्दिक पांड्या 7:30 शाम दोनों होंगे आमने सामने और दोनों टीमों में होगी जबरदस्त भिड़त। इंतज़ार लोगों को ये भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स में कुछ एक रील्स जो हैं वो निकल कर आई हैं, तो वहाँ पर एक बार फिर से आप सभी के थला जर्सी नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी जो है वो प्रैक्टिस करते नज़र आ रहे थे। तो इंतज़ार इस बात का भी है कि आज महेंद्र सिंह धोनी जो है वो दिखेंगे और साथ ही साथ रोहित शर्मा भी वहाँ पर दिखे थे। तो इंतज़ार है सभी को कि भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जी वहाँ पर मौजूद होंगे या नहीं होंगे, खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, ये हज़ारों लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में आज ये सवाल कहीं ना कहीं खनक रहा है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला, बने हुए हैं हमारे साथ बिल्कुल लाइव।

शोधो एफ एम एड निक्यान विद शम्लब्ध 2 मेगाहर्ट्स पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ सचिन कपूर। हाँ, ये कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और बहुत प्यारा सा गीत आई थिंक आप सभी ने जो है वो सुना। तो एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से जो है वो वायरल हो रही है। जी बिल्कुल श्रोताओं, वो है माँ की ममता ने मरते दम तक जो है वो नहीं मानी हार। जी बिल्कुल श्रोताओं, मध्य प्रदेश के आप सभी को पता है एक बांध में जो है वो हुए क्रूज हादसे में बचाव दल के लोग उस समय भावुक हो गए और जब एक महिला का शव उसके बच्चे से लिपटा मिला। बचाव दल ने बताया कि शुरुआत में हमें मलबे से एक महिला का शव निकालने में काफ़ी मुश्किल हुई। हमने देखा कि उसने अपने बच्चे को कसकर पकड़ा हुआ था और उन्हें अलग करना मुश्किल था। माँ ने अपने 4 साल के बेटे को जो है वो अपनी छाती से कसकर जकड़ा हुआ था। ये दृश्य देखकर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें जो है वो नम हो गई। हर किसी की आंखों में जो है वो आंसू आ गए। अब तक 9 जो हैं वो शव मिल चुके हैं श्रोतों। प्रशासन के मुताबिक 28 लोगों को बचा लिया गया है। 3 बच्चों सहित 4 लोग जो हैं वो अभी भी लापता है। जी बिल्कुल, चलिए, दुर्घटना का कोई भरोसा नहीं है कब कहीं कहाँ हो जाए, है ना। तभी तो हम हमेशा कहते हैं श्रोतों की देखिए, छोटी छोटी बातों के पीछे ना मत दौड़िए। अगर छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हम लगते हैं, छोटी छोटी बातों के पीछे हम दौड़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें और ऐसे मतलब छोटी छोटी बातों के पीछे एक दूसरे की बुराई ना करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इवन कि एक दूसरे का सहारा जो है वो बनने की कोशिश करें श्रोताओं। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। चलिए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है कार्यक्रम में। गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं, आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि 4 तारीख को बिजली कहां कहां नहीं है, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। उन क्षेत्रों के नाम हम लेने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि योल में बिजली नहीं है 4 तारीख को, सिद्धबाड़ी में नहीं है, गाइटो मिनिस्ट्री में नहीं है, योल बाज़ार में नहीं है, बंदरोड़ू, चतहड़, स्लेड़ गोदाम, थेड़ू और नरवाना, तंगरोटी, रक्कड़, उथड़ा, ग्रां, यहाँ पर जो है, इन जगहों पर जो है वो 4 मई को सुबह 9:30 बजे से लेके ऐसा कार्य समाप्ति तक जो है वो आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम ख़राब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य जो है वो स्थगित जो है वो किया जाएगा श्रोताओं, और कार्य जो है वो चलेगा आपका बिल्कुल अगले दिन चल सकता है। अगर 4 तारीख को जो है वो बारिश हुई या फिर मौसम ख़राब हुआ तो फिर ये अगले दिन चलेगा। 9:30 बजे से लेकर जब तक कार्य समाप्त नहीं होता तब तक बिजली नहीं आएगी इन जगहों पर, जिन जगहों का नाम जो है वो मैंने लिया है श्रोताओं। तो आइए कार्यक्रम को फ़िलहाल हम आगे बढ़ाते हैं, और आप सभी सुन रहे हैं समय आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलते हैं आपको एक और प्यारे से।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और श्रोतो, कहते हैं ना कि मौत जो है वो सबको अलग कर देती है, लेकिन जबलपुर में जो हुआ वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि एक माँ की ममता जो है उसे मौत भी नहीं अलग कर सकती है, एक माँ का प्यार जो है उसे मौत भी नहीं अलग कर सकती है। जी बिल्कुल, वो वीडियो आप सभी ने देखी होगी, बहुत वायरल हुई है श्रोतम, बहुत ज़्यादा वायरल जो है वो हुई है वो वीडियो। और हाँ, वाकई में ना कि कहते हैं ना कि मौत सबको अलग कर देती है, लेकिन एक माँ ने ये बताया, ये गलत साबित कर दिया कि मौत जो है वो सबको अलग नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल श्रोतम, आप सभी बने हुए इस समय एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला के साथ। और हाइए लेके चलते हैं आप सभी को, क्योंकि वक्त हो गया, 7 बज चुके हैं शाम के, और अब वक्त हो गया है समाचारों का।
1: बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं समझा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में सम्पन्न हो गया। सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 1 जवान घायल हो गया। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्ण कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना चोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए रवाना की गई टीम के साथ ये घटना हुई। घायल जवान का उपचार हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। जयपुर में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आईपीएल इतिहास में 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल

0: है बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है। सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान पर रुचिका, ये तो बहुत महंगा होगा ना।
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब PG जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: श्रोता FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है, और समाचारों के बाद अंतराल के बाद आप सभी का मैं सचिन कपूर स्वागत करता हूं। और अंतराल के बाद समाचार के बाद लगता है ना कि एक प्यारा सा गीत जो है वो हो जाए श्रोताओं, तो बिल्कुल। और ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ है श्रोताओं कि प्यारा सा गीत जो है वो आपने ना सुना हो? नहीं हुआ ना, तो चलिए जी ऐसा होगा भी नहीं। फिलहाल इन्जॉय करते हैं इस गीत को।

बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने होप सो एंजॉय भी किया होगा और सुना भी है। ये चांद कोई दीवाना है, हाँ वाकई में चांद तो दीवाना है ही है। आप सभी बने हुए इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला में, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RC वेडी जो कि सचिन कपूर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक खास जानकारियाँ जो है वो आपके साथ हम साझा करते हैं। श्रोताओं, कांगड़ा में बना धर्मशाला जीतने का प्लान। जी बिल्कुल श्रोताओं, भाजपा नेताओं ने बैठक के दौरान जो है वो नगर निगम चुनावों को लेकर जो है वो बनाई रणनीति। भाजपा नेताओं ने जो है वो नगर निगम धर्मशाला चुनाव को कांगड़ा में रणनीति जो है वो बनाई। श्रोताओं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में नगर निगम धर्मशाला में प्रस्तावित चुनाव में भाजपा की जीत जो है वो सुनिश्चित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, पवन काजल, सचिन शर्मा, विक्रम ठाकुर, रविंदर रवि, अरुण मेहरा और अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। बैठक में पार्टी प्रत्याशी विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी जो है वो चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए। इसके उपरांत उन्होंने शाहपुर में पूर्व मंत्री सरवीण चौधरी के पुत्र के विवाह में भी जो है वो शामिल हुए और बरबधु को जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया। श्रोतों, तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए व्यवस्था परिवर्तन के नारे को पूरी तरह जो है वो खोखला करार दिया है। जयराम ठाकुर ने टांडा मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो अति संवेदनशील विभाग की OPD में ताले लटक रहे हैं और काफ़ी चीज़ों को लेकर जो है वो जयराम ठाकुर ने सवाल खड़े किए। श्रोताओं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं व्यवस्था का पतन, जयराम ठाकुर जी ऐसा बता रहे हैं। तो कार्यक्रम आप सभी RJ सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट पर। आप सभी को लेके चलते हैं श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहिएगा वीडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। चलिए श्रोतो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। नगर निगम धर्मशाला के चुनाव 2026 के लिए नामकरण प्रक्रिया के तहत विभिन्न वार्डों से जो हैं वो लगभग 98 उम्मीदवारों ने जो है इनके द्वारा जो है वो नामकरण पत्र दाखिल किए गए हैं। श्रोतो इस संबंध में जानकारी देते हुए उपमंडल अधिकारी SDM धर्मशाला मोहित रतन ने बताया कि 29 अप्रैल 2026 तथा 2 मई 2026 को अलग अलग वार्डों में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जो है वो नामकरण प्रस्तुत किया गया है। श्रोता उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि वार्ड नंबर 1 फसरेड़गंज से हिमांशी कांग्रेस पार्टी से जो ताल्लुक रखती हैं उन्होंने 30 अप्रैल को दिया है और 2026 को रेखा देवी भाजपा 2 मई को 2026 को नामकरण दाखिल किया, जबकि वार्ड नंबर 2 भागसुनाग से ओंकार चंद निर्दलीय और शमशेर सिंह भाजपा और अशोक कुमार कांग्रेस से 2 मई 2026 को नामकरण भरा है। वार्ड नंबर 3 मैकलोडगंज से आशा देवी भाजपा एवं सुदर्शना कांग्रेस ने 30 अप्रैल 2026 को अपने नामकरण प्रस्तुत किए। इसी प्रकार वार्ड नंबर 4 कश्मीरी हाउस से नेहा संगल भाजपा ने 30 अप्रैल 2026 को तथा नीनू शर्मा कांग्रेस ने 29 अप्रैल 2026 तथा बीना शर्मा निर्दलीय ने 2 मई 2026 को नामकरण दाखिल किया है। SDM ने बताया कि वार्ड नंबर 5 और श्रोतों हर वार्ड से जो है वो भाजपा कांग्रेस और निर्दलीय खड़े हुए हैं। वार्ड 17 है तो पूरी जानकारी देते देते आप सभी को पता है हर किसी ने जो है वो श्रोतों अपना नामकरण भरा है। अब जनता जनार्दन है जी, जनता फैसला करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, है ना। पार्टियां और चाहे जो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो जनता होती है वो ही आखिरकार फैसला लेती है कि किसके सर पर जो है वो राज तिलक लगेगा और किसके सर पर जो है वो राज तिलक नहीं लगेगा। हम हमेशा से कहते आए हैं जनता जनार्दन है और जनता ही सारी चीज़ों को जो है वो चैनलाइज भी करती है और फाइनलाइज भी करती है जी। बिल्कुल आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ।

शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और अब वक्त हो गया वेड़ी गुंजन धर्मशाला में गए छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद श्रोताओं वापस आते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को ताज़ा जानकारियों की ओर।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: श्रोतो, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी बने हुए हैं सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव। तो चलिए श्रोतो, लाइव कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला जो है वो भी यूं ही चलता रहेगा, साथ ही साथ गीत संगीत का सिलसिला जो है वो भी यूं ही चलता रहेगा। तो ये आप सभी को अब एक और प्यारे से गीत की ओर जो है वो लेकर चलते हैं, यही होता प्यार। जी बहुत ही प्यारा सा ये गीत है श्रोताओं, यही होता प्यार, और इस गीत का आनंद जो है वो हम सभी ज़रूर लेंगे श्रोताओं। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ने इस पे बहुत ही अच्छी जो है वो एक्टिंग की है, और हिमेश रश्मिया द्वारा जो है वो ये गीत गाया गया है श्रोताओं। तो लेकर चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ आप सभी यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिए।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर हूँ। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम अब बिल्कुल क्योंकि 7:45 होने ही वाले हैं और अब आप सुनेंगे वेडी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचार। जी बिल्कुल, तो आप सभी यूँ ही जुड़े रहिए, बने रहिए और सुनते रहिए, सुनाते रहिए आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने मन की और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं की। आइए सुनते हैं श्रोताओं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, ये अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए 1426 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन, 4 मई को होगी जांच। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, अपनी उपलब्धियों के आधार पर शहरी निकाय चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार ने नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए शुरू किया सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। और विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने रामपुर के खनेरी अस्पताल में नर्सिंग छात्राओं के टीबी संक्रमित होने पर जताई चिंता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। इन चुनाव के लिए प्रदेश के 10 जिलों में कुल 1426 उम्मीदवारों के नामांकन भरे गए हैं। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 269, मंडी जिला में 214, शिमला जिला में 167, जबकि सोलन जिला में 158 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि नामांकन पत्रों की जाँच 4 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 6 मई तक नाम वापस ले सकेंगे और इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। शहरी निकायों के लिए मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। सिरमौर जिला में नगर निकाय चुनाव के लिए 92 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। नाहन नगर परिषद के लिए कुल 31, पांवटा साहिब नगर परिषद के लिए 40, जबकि नगर पंचायत राजगढ़ के लिए 21 नामांकन दर्ज हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि 4 मई को नामांकन की जांच की जाएगी, जबकि 6 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
2: जिला सिरमौर में टोटल हमारे 92 नॉमिनेशंस हैं, जो 3 हमारे यूएलबी सीट्स हैं वहाँ पे फाइल हुए हैं। इसमें जो हमारा 13 वार्ड है एमसी नाहन के, 13 है पौंटा के और 7 वार्ड एनपी राजगढ़। जैसे आज अंतिम तारीख थी नॉमिनेशन फाइल होने की और मंडे को यानी 4 मई को स्क्रूटिनी की जाएगी। स्क्रूटिनी में हमें पता चल जाएगा जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं किसके कागज ठीक है, किसके ठीक नहीं है। उसके बाद विड्रॉल की तिथि हमारी 6 मई की है, तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना जो नामांकन है उसको विड्रॉ करना है वो 3 बजे से पहले पहले नामांकन।
1: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धियों के आधार पर नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर वोट करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बड़ी संख्या में जीत कराएंगे।
3: जो हमारे नगर निगम है, जिसमें खास रूप से मंडी है, पालमपुर है, धर्मशाला है,

0: और सोलन है, यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और प्रभारियों को हर जगहों पर नियुक्त किया गया है। तो निश्चित तौर से ओवरऑल जो सरकार की कार्यप्रणाली रही है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो एक फॉर्मेट पूरे प्रदेश में रहा है, हम उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और पूरी मजबूती से इन चुनावों को लड़ा जाएगा।
1: विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत सड़कों की टारिंग के कार्य रुकने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा कर विकास कार्य जारी रखने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। नाहन में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी स्थानों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता चुनावी वायदे पूरा ना करने वाली कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से तंग आ चुकी है और इन चुनाव में सरकार को जवाब देगी।
2: चार कॉरपोरेशंस, 22 नगर पालिकाएं और 25 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर अपने कैंडिडेट्स उतार रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि 3.5 साल में जिस कांग्रेस की सरकार ने जनता का जीना दूभर किया है, उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
1: केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र में एक चलती गाड़ी पर आज पेड़ गिरने के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने शिमला जिला के रामपुर खनेरी नर्सिंग संस्थान व अस्पताल में 20% नर्सिंग छात्राओं के TB संक्रमित होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन छात्राओं के TB संक्रमित होने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम ना उठाया जाना अत्यंत शर्मनाक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि दशकों से चल रही इस लड़ाई में जहां केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भरपूर सहयोग दे रही है, वहीं प्रदेश स्तर पर इस मामले में भारी लापरवाही सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि TB उन्मूलन अभियान एक स्वस्थ व बेहतर कल का अभियान है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नगर निगमों, पंचायतों और नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सभी को पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी है और ऐसे में पार्टी मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगे आना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रसून जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को उनकी पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने डॉक्टर परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नव निर्माण में डॉक्टर परमार का उल्लेखनीय योगदान है और हिमाचल कभी भी उनके इस ऋण को नहीं चुका सकता। विनय कुमार ने कहा कि डॉक्टर परमार के अथक प्रयासों से ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित नंदा भी इस दौरान मौजूद रहे। सिरमौर कल्याण मंच सोलन ने भी डॉक्टर परमार को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिलासपुर जिला में गोविंद सागर झील और कोल डैम में जल गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई नौका दुर्घटना के मामले को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त राहुल कुमार द्वारा जारी इन निर्देशों का पालन करना सभी संचालकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और जन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में आज भी कुछ स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से फसलों और फलदार पौधों को नुकसान हुआ है। मौसम के इस मिजाज से दिन के तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश भर में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा नीट यूजी परीक्षा कल 3 मई को ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अलावा संबंधित जिला प्रशासन की ओर से भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। किन्नौर जिला में पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से निपटाने के लिए रिकांगपियो में नियंत्रण कक्ष व मीडिया सेल स्थापित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि ये नियंत्रण कक्ष चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियों की सतत निगरानी करेगा। उधर हमीरपुर जिला में पंचायत चुनाव के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए 1426 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। 4 मई को होगी जांच। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, अपनी उपलब्धियों के आधार पर शहरी निकाय चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार ने नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए शुरू किया सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने रामपुर के खनेरी अस्पताल में नर्सिंग छात्राओं के टीबी संक्रमित होने पर जताई चिंता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, अब रेडियो गुंजन धर्मशाला से इस समय वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। और कहते हैं ना कि राहों में उनसे मुलाकात होगी, जिससे डरते थे वही बात होगी, ये अक्सर होता है। फिलहाल मैं यानी सचिन कपूर आपसे लेता हूँ अलविदा। जाते जाते यही कहूँगा, हंसते रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और नाचते रहिए, झूमते रहिए, गाते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक

0: कनिका आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप के पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू।
0: बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे। सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लो प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी थाली से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता के उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने मतलब 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
4: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे पैटर्न वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
4: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे
4: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
4: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
5: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
4: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
7: हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
8: ठीक तो है।
7: का ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
8: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
7: क्या है?
8: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
7: आहा, बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
8: झुड़वलती है।
7: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है। झुड़वलते आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊं रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन, माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी, नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: अरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप के पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तुम।
0: बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है उन्हें खाना नहीं दे। सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लो प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
0: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी थाली से मत खिलाओ, उसने 20 रुपए निकाले देंगे चुराए, और ज्यादा लाड़ जता के उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करें। अब जब क्या खाना खाने मतलब 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
4: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
4: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे
4: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
4: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
5: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
4: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
7: हाय हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
8: ठीक तो है।
7: का ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
8: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
7: क्या है?
8: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
7: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
8: झूठ बोलती है,
7: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है, अच्छी तो बनी है, झूठ बोलता है। आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: या प्यास अधूरी रह जाएगी

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलाउड सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन, माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी, नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की

0: कनिका आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप के पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल रही है तुम। बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लो प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए।
3: ले बेटा अपनी थाली से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड जता के उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब तो क्या खाना खाने, मतलब 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
4: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
4: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे
4: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
4: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
5: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
4: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
7: हाय, कितनी गंदी चाय बनाई है। काकू कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
8: ठीक तो है।
7: का ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
8: कह तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
7: क्या है?
8: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
7: आहा, बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा,
8: झूठ बोलती है।
7: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है, झूठ बोलता है। आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो?

How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो?

0: वाह भाई वाह, क्या बात है। ओ अर्जुन सिंह है, ओ बड़े कमाल का गाता है यार तू तो, मजा आ गया यार कसम से।
1: बजाता भी अच्छा है।
0: अच्छा बजाता है ना?
1: हाँ बहुत अच्छा।
2: लेकिन तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा गा रहे थे तुम।
3: जी हम तो सिर्फ गुनगुना रहे थे। और अर्जुन सुना दो यार।
1: गाओ ना।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।